0: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. कैश पॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं. और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील कॉल 9046-1000 for Midland and Sues and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolden.com। क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: प्रकृति की खूबसूरती, आराम और रोमांच का बेहतरीन संगम आपका इंतजार कर रहा है ग्रैंड टापा टू रिजॉर्ट में। टोरंटो से सिर्फ 2 घंटे से भी कम दूरी पर पेरी साउंड एंड मस्कोका एरिया के पास हाईवे 400 नॉर्थ पर स्थित ये हर मौसम के लिए एक परफेक्ट गेटअवे है। हमारे प्राइवेट बीच का आनंद लीजिए, इंडोर स्विमिंग पूल में रिलैक्स कीजिए और हमारे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में हमारे इंडियन शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा उठाइए। आरामदायक होटल रूम्स और खूबसूरत कॉटेजेस भी उपलब्ध है। कॉल टुडे टू बुक योर स्टे एट 705-378-2210. That's 705-378-2210. Grand Tapa 2 Resort, आपकी अगली यादगार छुट्टियों की मंजिल।
2: कोई

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर it deserves.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call kare 416-284-7000. 416-284-7000.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolden.com।
3: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर it deserves.
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: सुनदे हो, मेरे प्रादिया च फ्लाइट है इंडिया तो।
2: ओ याद है। पर उन्हों कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरे दी फड़ लिया वे।
1: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खाल नहीं इंडिया दे सुपने ना देखो। choleBhature.ca ते चलो।
3: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca कॉल 9054582448।
0: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 by Vaughan Mills. This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors, Sarabjit Gill, CP Chatwal, for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें.

0: some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjeet Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam Rajdhani Sweets and Restaurant. क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.
1: At Wayne's Auto Group, aap hum par rely kar sakte hain. For everything automotive, chahe ho daily commute ya weekend scape, hamara promise will always remain the same. Har journey ko banaye khas. Wayne's Auto Group, hamesha aapke saath. Over 1400 dedicated associates jo bolte hain aapki language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: हुन टेंशन फ्री होके एंजॉय करो लाइफ नू। साड़ी हाई डेफिनेशन कैमरास ते इनोवेटिव स्मार्ट टेक्नोलॉजी नाल अपने घर जां कारोबार ते रखो निगाह 24 घंटे 7 दिन दुनिया दे किसी भी हिस्से तों इंटरनेट राही किसी भी डिवाइस ते अपनी सेफ्टी ते सिक्योरिटी दा आप ख्याल रखो। वधेरी जानकारी लई कॉल पॉल सैगल 416-940-0624 और विजिट safetyandsecuritysolutions.ca। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
3: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोटराल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर पर। गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा इन पिनाक ओझा जी, 10 कॉट्रल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन से आपको करते हैं सर्व। नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन। द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे फॉर योर कन्वीनियंस, 10 AM टू 6 PM। वॉक इन करें या अपॉइंटमेंट बनाएं, और ऑब्वियसली अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो फोन पर कंसल्टेशन करें और दवाई आपको शिप कर दी जाएगी। 647-760-2779, 647-760-2779। देखते हैं मीता जी आज किस हेल्थ टॉपिक पर करेंगी बातचीत। मीता जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
5: हेलो एवरीवन, दिस इज मीता फ्रॉम काव्या होम्योकेयर। आज हम देखते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में कि वेरिकोज वेन्स क्या है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे लेग्स में खास करके जो वेन्स हैं वो स्वॉलन, ट्विस्टेड बन जाती हैं, विजिबल बन जाती हैं, ब्लू कलर की वेन्स आप देख सकते हैं, तो इस कंडीशन को वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे हार्ट से आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट्स ऑर्गन्स तक जाता है, और वेन्स का काम है कि वो ब्लड को वापस हार्ट की ओर लेके आए। तभी वेन्स में जो है एक तरह के वाल्व होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, जिस करके जो ब्लड बॉडी में ऊपर की ओर जाएगा वो वापस नीचे ना चला जाए। अब जैसे ये वाल्व कभी वीक हो जाते हैं कोई भी कारण से, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो ब्लड है वो नीचे वेन्स में भरा रहेगा, जिस करके वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा और ये जो वेन्स है वो स्वॉलन हो जाएंगी। सो ब्लू कलर की वेन्स जो है विजिबल बन जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सबसे पहले ये लेग्स में ब्लड बनना शुरू होगा, जिस करके आपने देखा होगा ज्यादातर पैर में आपके लेग्स में जो है इस तरह की वेन्स जो है वो विजिबल बन जाती हैं। अब कई बार जो छोटी छोटी वेन्स हम चेहरे पे देखते हैं, हाथों पे देखते हैं, जिसको स्पाइडर वेन्स कहा जाता है, ये जो स्पाइडर वेन्स हैं वो भी वेरिकोज वेन्स का ही एक पार्ट है। जो हेमरोइड्स हैं जिसको बवाशीर कहा जाता है, सो सिमिलरली एनल वेन्स जब इस तरह स्वॉलन हो जाती हैं, पेनफुल बन जाती है, जिसको हम पाइल्स या हेमरोइड्स कहते हैं, वो भी एक तरह की वेरिकोज वेन की ही टाइप है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये डीप वेन्स में भी हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन अंदर की जो डीप वेन्स हैं उनको मसल का सपोर्ट मिल जाता है, जिस करके वहां पे ज्यादा ये डेवलप नहीं हो सकता, प्रिवेंशन हो जाता है। जबकि हमारी सुपरफिशियल वेन है, बाहर वेन्स हैं, उसको मसल्स का इतना सपोर्ट नहीं होता है, जिस करके आप देखेंगे कि लेग्स में भी जो बाहर की वेन्स हैं वो इस तरह विजिबल बन जाती है, वहां पे वेरिकोसिटी आ जाती है। नॉर्मली जब वेरिकोस वेन्स होती हैं तो ज्यादातर कोई कंप्लेन नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं आती है, और ये वेन्स उन लोगों में डेवलप होती है जिनका स्टैंडिंग का जॉब है, कि दिन में 8-10-12 घंटे जिनको खड़े रहना होता है, तो उनमें ये डेवलप होगी। और फिर लेडीज में खास करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के टाइम जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, उस करके इसकी शुरुआत हो जाती है, जो डिलीवरी के बाद कई बार सही हो जाती है, तो कई बार ये इसी तरह रहती है एंड समटाइम्स ये बढ़ने लगती है। सो कोई भी कारण जिसमें स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जैसे कि आप कह लें जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या क्रोनिक डायरिया की प्रॉब्लम है या यूरिन पास करने के लिए स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, तो उन लोगों में भी इस तरह की कंडीशन जो है ये डेवलप हो सकती है। वेरिकोज वेन जो है ज्यादातर कॉस्मेटिक कंसर्न होता है, लेकिन जब ब्लड वहां पे भरा रहेगा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाने से फिर आपको लेग क्रैम्प्स, लेग में दर्द होना शुरू हो जाता है, कड़ाले पड़ना जिसको कहते हैं, या काफ में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है, सोरनेस फील होना, पैर जैसे आपके पूरे जम गए हो, स्टिफ हो गए हो, एंड कई बार वहां पे ब्लैक डार्क डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। एंकल के आसपास, गिट्टे के अराउंड आप देखेंगे कि स्किन जो है वो ब्लैक हो गई, वहां पे खारिश शुरू हो गई, और कई बार इस तरह का एक्जिमा वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड जब वहां पे ब्लड का क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो उसके साथ कंडीशन सीरियस बन जाती है, आगे जाके वेन में अल्सर तक डेवलप हो सकता है, उस एरिया में अल्सर बन सकता है। सो इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट है इट्स वेरी इफेक्टिव। आप कभी भी, आपको पता चला है कि वेरिकोज वेन्स की इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और ये सिम्टम्स से आप सफर कर रहे हैं, आप काव्या होम्योकेयर से हमारा कॉन्टेक्ट जो है ये जरूर कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज 6477602779। थैंक यू।
3: थैंक यू सो मच मीता जी। एंड दोस्तों याद रखें, काव्या होम्यो केयर, मीता ओजा एंड पिनाक ओजा, 10 कोट्रल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का इंटरसेक्शन। क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 6 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 6477602779। काव्या होम्यो केयर, 6477602779।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940।
1: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
4: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
5: अच्छी, याद है याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
4: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
6: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
7: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम बात करते हैं आयशा मुनव्वर जी से, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इनसॉल्वेंसी काउंसलर। और आयशा जी का ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑप्शंस आपको देती हैं अलग अलग फॉर डेट सेटलमेंट और मैक्सिमम डेट रिलीफ के लिए। आपने कॉल करना है 416-428-2165, 416-428-2165। आयशा जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
1: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज में है, कौन सी चीज का आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू। और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती है। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ। और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियां हो गई, बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा आरआरएसपी, आरईएसपीज हो गए, तो वो सारी चीजें जो है वो सेव रहती हैं। और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें। और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं। वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और उसमें यह कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लेजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाए। बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन गिव अस अ कॉल। माय फोन नंबर इज जी 416-428-2165, दैट इज 416-428-2165। थैंक यू वेरी मच।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट इंसॉल्वेंसी काउंसलर आयशा मुनव्वर जी, एंड आपको देते हैं अलग अलग ऑप्शंस फॉर डेट सेटलमेंट। द नंबर टू कॉल आयशा मुनव्वर 416-428-2165, 416-428-2165, आयशा मुनव्वर।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: गोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से। कांटेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।

0: त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा भट्ट।
0: जय श्री राम।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info। This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30 plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
7: की थानू किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ले मॉर्टगेज दी लोड है, जिवें फर्स्ट और सेकंड मॉर्टगेज, परचेज और रीफाइनेंस या प्राइवेट फंड्स, हर जगह हाथ पैर मार के देख चुके हो,
8: तब फिक्र क्यों कर दे हो? नीलम सिद्धोव कुल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
7: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट्स, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
8: इन अ कॉल नहीं, ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स,
7: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
8: आज ही कॉल करो नीलम सिद्धोव नो,
7: 6477398710, लाइसेंस नंबर M200034504.
6: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: पापा, ये कौन सा शो है? पापा, पूरा GTA इसी के बारे में बात कर रहा है। सनी बेटा, ये साउथ एशियन अनलिमिटेड है,

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है. 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन. हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है. $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है. 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है. 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है. मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है. पिछे पानी है अते खूबसूरत है. क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा. बीच भी नजदीक है. जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222.
2: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.
3: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
4: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
3: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
5: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन 905 4573232. Clear Optical by Varun Kanda.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
2: वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं शिवानी आपके साथ, और आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है रेडियो टोरंटो कनाडा का ये आफ्टरनून ड्राइव टाइम शो। चलेगा हमारा और आपका साथ, और बहुत सारे म्यूजिक के साथ, गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s, ऑल ट्रेंडिंग मेलोडीज, और साथ में हमारे स्पॉन्सर्स के बेहतरीन मैसेजेस और ऑफर्स और संदेश आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे, और ये सब चलेगा रेडियो टोरंटो कनाडा के इस शो पर। नंबर टू कॉल 416-303-3639। गुड आफ्टरनून।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
4: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
5: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
4: क्या वो मदद करेंगे?
5: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
6: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
5: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
6: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
7: सब सड़क पर हादसा हो जाना आजकल के स्टैटिस्टिक्स को सामने रखा जाए तो एक आम सी बात लगती है। रोजाना बाहर निकलते हैं, हमें कहीं ना कहीं कोई हादसा दिखाई जरूर दे देता है, या फिर टेलीविजन स्क्रीन्स पे हम बहुत से हादसों को देखते हैं, लेकिन असल कहानी हादसा होने के बाद शुरू होती है, जब आपके मसल्स तने हुए हों, जो किसी को दिखाई नहीं देते कि कितने तने हुए हैं। जब आप फ्लैशबैक्स में चले जाएं, बार बार वो हादसा आपके दिमाग में घूमना शुरू कर दे, मेंटली आप अपसेट हो जाएं, तब अंदाजा होता है कि आप किस अजियत और किस परेशानी या तकलीफ से गुजर रहे हैं। इन सब की कंपनसेशन है, इन सब की तलाफी के तौर पर आपको रकम दी जाती है या आपका इलाज मुआवजा करवाया जाता है, लेकिन ये तभी करवाया जाएगा अगर आप किसी मुस्तनद, किसी तजुर्बाकार और किसी मजे हुए वकील से बात करेंगे। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, बैरिस्ट्री पढ़ी हुई है इन्होंने, मोर देन फुल टाइम इनटू पर्सनल इंजरी लॉ है, वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम, वन एंड ओनली सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको।
8: जी तो फैल भाई, आपको और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके लिस्टर से अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं।
7: थैंक यू।
8: और हम उन्हें ऐसी टिप्स दें जो उनके काम आए।
7: शुक्रिया बहुत।
8: तो फैल भाई, जैसा आपने बताया, सैयद लॉ एक एक्सक्लूसिव पर्सनल इंजरी लॉ फर्म है। इसका मतलब ये कि वी डोंट डू एनीथिंग एल्स, वी जस्ट डू पर्सनल इंजरी क्लेम्स।
7: जी।
8: कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है, कॉस्मेटिक इंजरी है, उसके अलावा आपकी एरोप्लेन इंजरी है, यानी जहां भी इंजरी है और किसी थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है, यू रिटेन सैयद लॉ ऑफिस और सैयद लॉ ऑफिस इस बात को मेक श्योर करेगा कि आपको आपकी इंजरीज का मैक्सिमम कंपेंसेशन दिलवाया जाए। आज तो फैल भाई हम बात करेंगे कि जी अगर जो डॉग बाइट हो जाए तो उससे के बाद क्या करना चाहिए।
7: बिल्कुल ठीक।
8: क्योंकि समर हैगा, लोग पार्क्स में जाते हैं, डिलीवरी पीपल जो हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, वो डिलीवरी करने लोगों के घरों पे जाते हैं जहाँ पे डॉग्स भी होते हैंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई डिलीवरी करने जाए या कोई पार्क में हो और अगर किसी का डॉग उसे जो है वो बाइट कर ले और अटैक करे और वो इंजर्ड हो जाए, तो उस सूरत में जो है वो क्या स्टेप्स लेने हैं इनिशियली, और कुछ जो है इनिशियल स्टेप्स के बाद क्या करना है। तो देखिए, अक्सर औकात जो ड्राइवर्स जाते हैं डिलीवरी करने के लिए, तो वो घर पे डोर पे गए, मालूम हुआ वहां पे उनका डॉग अनलीश था, वो डॉग बाहर निकल के आ गया और उसने अटैक कर दिया और उसने इंजर्ड कर दिया।
7: जी।
8: तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपने जो है वो डॉग का अटैक जो है वो इतना खतरनाक नहीं होता है आमतौर पे कि आप अनकॉन्शियस हो जाएं। तो लेकिन बहरहाल जितना भी आप जो भी कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने जो है वो मीन्स टू से दैट यू गट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, आपने अवॉइड करना है कि डॉग अगर जो है, लेकिन ऑब्वियसली अगर डॉग अनलीश्ड है तो वो आपके पीछे भागेगा और आपको जो है वो इंजर्ड करेगा।
7: बिल्कुल ठीक।
8: अगर आप जो है वो इस किस्म की सिचुएशन में हो तो आपने सबसे पहला काम आप ये करना हैगा कि आपने जो है वो 911 को कॉल करना है और एम्बुलेंस कॉल करनी है
7: जी,
8: ताकि पैरामेडिक्स आके आपको जो है वो एग्जामिन करें और आपको जो भी ट्रीटमेंट की नीड है ऑन सीन वो दे, या आपको अगर हॉस्पिटल मूव करना है तो हॉस्पिटल लेकर जाए।
7: बिल्कुल ठीक।
8: आपने जो भी आपके मार्क्स हैं, अगर आप खुद तस्वीरें नहीं ले सकते हैं तो किसी को कैमरा दे दें, जो भी आपके बॉडी मार्क्स आए हैं, आपके जो क्लोथ जो है वो टियर अप हो गए हैं, वॉर्न हो गए हैं, उसको जो है वो अपना क्या कहते हैं डैमेज कर दिया है, आपके बूट्स को क्लोथ्स को, वो आपने सारी जो है वो पिक्चर्स ले लेनी है और उन क्लोथ्स को आपने जो है वो आपने सेव रखना है।
7: उनको
8: आपने जो है वो ऐसी जगह पे रख लेना है कि वो सेफ रहें।
7: बिल्कुल ठीक।
8: और आपके पास जो है वो इन केस ऑफ नीड वो एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सके।
7: बिल्कुल सही।
8: इसी तरह से आपने जो है वो अगर आपके फर्ज किया कि कोई आपके पास बैग था उसको भी डैमेज किया है तो उसको भी आप जो है वो बड़ी हिफाजत के साथ आप उसको रखें।
7: बिल्कुल सही।
8: सेव इट फॉर फ्यूचर यूज, ताकि आपको जो है

0: डिपार्टमेंट
1: जी
0: डील करता है,
1: सही
0: वहां पर आपने जो है वो इसको रिपोर्ट करना हैगा ताकि वो एक रिपोर्ट बना सके।
1: बिल्कुल ठीक
0: ओनर का जो एड्रेस है वो आपने पिक्चर ले लेनी है, घर की, घर के नंबर वगैरह की, और जो है वो अगर हो सके तो डॉग ओनर जो है, क्योंकि डॉग ओनर डिफरेंट भी हो सकता है, उसका भी आपने डिटेल्स आपने ले लेनी है।
1: बिल्कुल सही
0: ये सारे काम आपने करने के बाद जो है आपने लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिटेन करनी है, ताकि जो है वो डॉग ओनर को सू किया जा सके फॉर डैमेजेस, और आपके जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, प्लस ये कि साइकोलॉजिकल इंजरीज और फिजिकल जो आपने सस्टेन की है। रिमेम्बर कि ये जो है, ये अक्सर लोगों ने डॉग इंश्योरेंस भी ली भी होती है कि अगर के मतलब ये कि डॉग अटैक को इसको कर दे एक्स्ट्रा इंश्योरेंस,
1: जी
0: लेकिन अगर वो होम ओनर है तो उसकी होम इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्पॉन्ड करेगी और आपको आपका क्लेम जो है वो सैयद लॉ ऑफिस दिलवाएगा,
1: बिल्कुल सही,
0: और आपको वो कंपेंसेशन दिलवाएगा जो कि आपके केस के लिए मैक्सिमम कंपेंसेशन
1: होगी, बिल्कुल ठीक,
0: ये आप जो है इस किस्म के किसी भी सिचुएशन में कॉल करें।
1: बिल्कुल
0: और हम
1: सही,
0: आपके प्रोग्राम में बता रहे हैं कि इंश्योरेंस लॉज में काफी चेंजेस आ रही हैं, जिसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है उसमें इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शनल हो रहा है। आपने जुलाई 1st के बाद जो भी पॉलिसी रिन्यू आपने वो बाय करने हैं, ताकि आपको जो है वो इन केस यू आर इन एक्सीडेंट आपको वो क्लेम मिल सके।
1: बिल्कुल
0: कोई भी
1: ठीक,
0: छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट हो आपने कॉल करने है कि एक नंबर पे, हमारी वेबसाइट है सैयद लॉ ऑफिस .ca, फेसबुक पेज है हमारा सैयद लॉ ऑफिस, नंबर तो फैल भाई आप बताएंगे ताकि आपके लिस्टनर्स हमारा नंबर नोट कर लें। थैंक यू।
1: यहां नंबर है सैयद एम रजा बैरिस्टर का नंबर, मिलाए बेहतरीन कंपनसेशन पाए, एक ही क्लाइंट को $2 million तक की कंपनसेशन दिला चुके हैं। ही फाइट्स योर केस बेस्ड ऑन ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। यहां है नंबर 416-937-5046, नंबर अगेन इट्स 416-937-5046। बहुत शुक्रिया सैयद अहमद रजा बैरिस्टर, थैंक यू।
0: थैंक यू फॉर वेलकम।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, आगे बढ़ने से पहले बहुत प्यारी सी शायरी लाइनअप की है, लेकिन उससे पहले ज़रूर बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छी सी डील्स लगी हुई हैं स्टार लाइट ट्रेवल की तरफ से। अगर आप अपने लव्ड वन को विजिट करना चाहते हैं टोरंटो टू अमृतसर, विजिट कीजिए, वो भी बचत के साथ, ओनली 1385 कैनेडियन में पर पर्सन, 2 bags इंक्लूडेड, और ऑल टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड है, ऑल फीस इसमें इंक्लूडेड है, हिडन चार्जेस इसमें नहीं है। और अगर आप यहां से बुकिंग करते हैं तो स्पेशल ऑफर भी आपका इंतजार कर रहा है।
1: तो ये लोगों को ही लेके जाता है या लोगों के गुनाहों का वजन भी उठा लेता है?
2: ये 1385 में लोग ही इंक्लूडेड है। और इसके आगे की कोई जानकारी अगर आप आमिर जी की तरह जानना चाहते हैं, या स्पेशल डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर का आप फायदा उठाना चाहते हैं, इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और हवाला जरूर दीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा का, 437-499-5550, 437-499-5550। दिस इज स्टार लाइट ट्रेवल। और बढ़ते हैं आगे, और एक बहुत प्यारी सी शायरी, तो शायरी की शुरुआत आज आप कर दीजिए आमिर।
1: हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।
2: क्या बात है, बहुत खूब। और इसी से मिलती जुलती एक और शायरी भी कर दी जाए आपके लिए। कहते हैं, तुझे सोचें तो फिर सोते कहाँ हैं, इतने बेअदब हम होते
1: कहाँ हैं,
2: बयां करते भी हैं तो दिल की हालत, ये आंसू आंख के होते कहाँ हैं,
1: होते कहाँ हैं,
2: बनाने पड़ते हैं हिम्मत से अपनी, सफर में रास्ते होते कहाँ हैं,
1: वाह वाह,
2: तेरे होने का वादा हम कैसे कर लें, हम अपने भी कभी होते कहाँ
1: हैं, बहुत खूब।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन।
1: 40 सालों का विश्वास, सफर हर बार खास। स्टारलाइट ट्रेवल्स, आयटा एंड टीकॉक सर्टिफाइड ट्रेवल एजेंसी, लेड बाय ट्रेवल एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा जी, विद 18 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेकिंग जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड मेमोरेबल। चीपेस्ट एयर फेयर डील्स हो या ऑल इंक्लूसिव वेकेशंस, कस्टमाइज हॉलीडे पैकेजेस, वीजा असिस्टेंस या ट्रेवल इंश्योरेंस, सब कुछ एक ही छत के नीचे। सपनों की डेस्टिनेशन हो या फैमिली वेकेशन, स्टारलाइट ट्रेवल बनाए हर सफर टेंशन फ्री और अनफॉरगेटेबल। स्टारलाइट ट्रेवल, सफर सिर्फ ट्रेवल नहीं, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। विजिट स्टारलाइट ट्रेवल्स, 7777 वेस्टर्न रोड, यूनिट 221 वॉन, और कॉल 416-745-0000, 416-745-0000।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा और 416-593-0055 हमारे स्टूडियोज का नंबर है, और 416-303-3639 इज द नंबर टू कॉल आफ्टर द शो और ड्यूरिंग द शो एज वेल। दोस्तों, बात करेंगे रूहानी कॉलेज की, और बात करेंगे हमारे अपने जो सपने होते हैं जिंदगी में, कुछ कर गुजरने के सपने होते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो करियर की ऊंचाइयों तक हमें ले जाते हैं, कुछ दूसरे तरीके के सपने होते हैं जो हम देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ करियर के सपनों की बात करें, जो अब हमारे करियर के साथ साथ हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी कंफर्म करता है, इंश्योर करता है, ऐसे करियर जो होते हैं वो कुछ चंद होते हैं जो हम गिनती पे उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनमें से एक करियर है डॉक्टर बनने का और मसाज थेरेपिस्ट का करियर। ये ऐसे करियर होते हैं जिनके जिसमें इनकम की गारंटी होती है, एक सेटिस्फेक्शन तो होता ही होता है, क्योंकि जब सपने पूरे होते हैं उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती, उसकी भी जिसके सपने पूरे होते हैं, और उन लोगों की भी जो उस इंसान के साथ जुड़े होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, लव्ड वंस हैं। एक बच्चा जो सपना देखता है डॉक्टर बनने का, और जिस दिन वो क्वालिफाई करता है, यू नो कि ग्रेजुएट होता है और डॉक्टर कहलाता है, उसका जो खुशी है वो बच्चे के साथ साथ उनके माँ बाप की भी होती है। यही खुशी के लिए जब रीज़न एक इंस्टीट्यूट होता है वो है रूहानी कॉलेज। जब आपके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, मसाज थेरेपिस्ट बनते हैं, स्टार्टिंग सैलरी अनबिलीवेबल होती है, तो आप ओम जी को कॉल करते हैं। और आमिर, जब ओम जी हमारे साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि सपने पूरे होते दिखाई देते हैं।
3: बिल्कुल
2: जी, तो ओम जी वेलकम करेंगे आपका, कैसे हैं आप?
4: थैंक यू शिवानी जी, आमिर जी, रियली गुड, एंड काफी अच्छा अभी टाइम चल रहा है। देखो, लोग एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं सारी जगह पे, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज में निकल रहे हैं वैकेंसीज वगैरह
2: जी।
4: तो अभी एक बढ़िया टाइम है डिसाइड करने का कि बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजना है, 4 साल वहां पर लगाना है, और उसको अगर डॉक्टर बनाना है तो सीधा का सीधा उसको 12th ग्रेड कंप्लीट किया अभी, तो 1 ईयर के हमारे पास स्टडी के बाद में डायरेक्ट एंट्री उसकी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज में हो जाती है। तो एक अच्छा जी जी जो इन्होंने अभी टाइम वेस्ट किया हुआ, कई बार आते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं हमें पता ही नहीं था कि हमने वैसे ही 4 साल पढ़ा जबकि हमारा काम 1 साल में हो जाना था। और उसके बाद देखो, ग्रांटेड एडमिशन की बात होती है कि एडमिशन आपकी ग्रांटेड, मतलब कि एक जो जर्नी है स्टार्ट हो जाती है, कुछ अनसर्टेनिटी नहीं रहती कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा क्या होगा। आपका एक फुल एंड फाइनल, और जो यहाँ पे फी भी है बहुत कम, बहुत रिजनेबल फी है।
2: अच्छा।
4: तो हर चीज को मिला के मैं बोलना चाहूंगा, जो भी पेरेंट्स अगर जिनके बच्चों को अपना डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, दे मस्ट कम, दे शुड कम एटलीस्ट टेक द इन्फॉर्मेशन
2: जी।
4: तो जी जी जी
2: जी बिल्कुल। और आमिर, जब हम लोग एक बार बात कर रहे थे कि जब हम दोनों छोटे थे तो डॉक्टर बनने का सपना देखते थे,
3: बिल्कुल,
2: तो हमारे जो बड़े थे जो डॉक्टर पढ़ चुके थे वो कहते थे कि आपकी जो पूरी यंग एज है वो पढ़ाई में निकल जाएगी। इतने सालों के बाद अब डॉक्टर बनेंगे, बनेंगे भी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपने इरेडिकेट कर दी है कि जल्द 1 साल में आप बन जाइए, वो भी गारंटी है। यहाँ तो देखिए, ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देंगे, उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, आप ऐसा कुछ जिक्र कर रहे थे लास्ट वीक ओम जी।
4: जी जी जी
2: जी।
4: तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो आफ्टर 1 ईयर पहले से ही हमारे जो पेरेंट्स हैं या बच्चों को हम बता देते हैं कि ये सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं, तो आप देख लो कहाँ पे जाना है। तो मतलब उनके माइंड में पहले से ही रहता है कि जब रूहानी कॉलेज आ गए तो हमने डॉक्टर बन के ही निकलना है यहाँ से।
2: क्या बात है जी। और अब हम बात करेंगे फाइनेंसिस की, क्योंकि आजकल के वक्त में सबसे ज्यादा होता है कि बहुत पैसे लगेंगे, और लेकिन आपके पास इसका भी बड़ा अरेंजमेंट होता है कि आप कहते हैं कि कम फीस में भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिस्टर्स के लिए टच बेस करना चाहेंगे आप ओम जी?
4: देखिए सोनी जी, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जिस बच्चे को पढ़ना है ना, तो फी की वजह से ऐसा नहीं हो सकता को नहीं पढ़े। उसको हम हर तरीके से हेल्प करते हैं, बहुत सारे फाइनेंस का ऑप्शन होता है, लेकिन बैंक करती है कुछ, इवन द ओसा जो लोग कम हुआ है लेकिन फिर भी ओसा की क्वालिफाई करती है, जो हमारे कॉलेजेज मेडिकल कॉलेजेज हैं वो सब के लिए क्वालिफाई करते हैं
2: जी।
4: तो मैं पर्सनल तौर पे भी देखता हूँ कि अगर बच्चे को पढ़ने की है कि उसको एक मेहनत करने की है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनेंसिंग कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो वो जस्ट वन ईयर है, जैसे ही डॉक्टर बनता है पहला साल में उसका पूरा पैसा वापस आ जाता है, और ड्यूरिंग द स्टडी हम पूरी हेल्प करते हैं।
3: सही,
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
3: यहाँ सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, आई वुड लाइक टू गिव योर कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर, अगर किसी को कम वक्त में डॉक्टर बनना है, सिर्फ प्लस टू की रिक्वायरमेंट है, बहुत शानदार करियर अपना सकते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, कहीं भी एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉक्टर बनने के बाद, ये नंबर मिलाएंगे 905-731-2555-905-731-2555। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, मान लीजिए किसी ने प्लस टू किया है अच्छे ग्रेड में, बुरे ग्रेड में, और वो चाहता है 15-20 हजार डॉलर महीना कमाए, तो कोई ऐसा प्रोफेशन बताइए जिसमें 15-20 हजार डॉलर महीना भी कमा ले कोई और साल भी एक ही लगे?
4: देखिए वो तो सबको पता है कि हमारे पास जो सबसे जो एक फेमस कोर्स RMT का है,
3: अच्छा
4: इसके इसमें सिर्फ 12th ग्रेड पास चाहिए, आपने कभी भी लाइफ में साइंस नहीं पढ़ी हो, आपने कॉमर्स की हो, आर्ट्स की हो, साइंस की हो, जो भी किया हो, बैंकिंग, IT, व्हाटएवर, तो अगर आप एक साल का ये हमारा मसाज थेरेपी का प्रोग्राम करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम जो हमारा ओंटारियो का एग्जाम, लाइसेंसिंग एग्जाम है, और उसके बाद आप RMT है, और फिर यहाँ पे देखो बिजनेस भी खोल सकते हैं, अपना इनकम भी है, और उसके बाद एक अनलिमिटेड एक स्कोप बन जाता है, लाइक आपने RMT कर ली, उसके बाद ऑस्टियोपैथ कर सकते हैं, एक्यूपंचर कर सकते हैं, वो सब हमारे पास में ही है, तो एक फुल करियर सेटलमेंट होती है कि पूरा का पूरा, कहते हैं पूरा फैमिली का एक पूरा हो जाता है।
2: क्या बात,
4: और एक, जी
2: जी
4: तो
3: बिल्कुल सही,
4: एक जने का नहीं पूरे मतलब कहेंगे बिजनेस सेट हो जाता है।
2: क्या बात है, देखिए इनकम गारंटीड है आमिर, और एक साल के बाद आपकी, देखिए ऐसा कई बार तो हम इतने इतने साल पढ़ने के बाद भी एक बेसिक सैलरी पर काम कर रहे होते, कहाँ पे एक साल के करेंगे और ऐसे इंस्टीट्यूट से पास आउट होंगे जो इतना रिनाउंड है, और आपकी जो सैलरी है वो अनबिलीवेबल है, मतलब बताएंगे तो आप बिलीव करेंगे नहीं,
3: हम
2: आपसे यही कहेंगे कि आप रूहानी कॉलेज जाइए, क्योंकि जब ओम जी आपको बताएंगे तो आपको डेफिनेटली बिलीव होगा, क्योंकि आपको वो दिखाएंगे भी कि इतनी सैलरी हम पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो देखिए एक फ्लरिशिंग करियर के लिए तो एक ही जगह है, जैसे अभी आमिर ने नंबर बताया, मेरे पास फिर से नंबर,
3: बिल्कुल नंबर बता देते हैं, अगर आप को मसाज थेरेपिस्ट बनना है, एक साल का डिप्लोमा कोर्स है, पास हो जाएंगे आप बड़ी आसानी से, इतनी मेहनत करवाते हैं, और उसके बाद फिर राइट अवे सून आफ्टर यू फिनिश दिस कंप्लीट दिस 15-20,000 अ मंथ। यहां है नंबर 905-731-2555, नंबर अगेन 905-731-2555। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच,
4: थैंक यू।
5: कभी क्लाइंट के ऑफ ग्रिड कैबिन के लिए आपने लंबर पहुंचाई थी, और आज वही पावरफुल टर्बोचार्ज्ड इंजन घर की सबसे प्यारी डिलीवरी ला रहा है, एक नया डॉल हाउस टोयोटा टैकोमा, रिलायबल पावर हर इम्पोर्टेंट डिलीवरी के लिए, ये टाइम है टोयोटा का। लीज अ 2026 टैकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फ्रॉम $115 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.89% APR विद $4,900 डाउन, हाइब्रिड अवेलेबल, विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: For amazing designer frames and designer sunglasses, visit KandaOptical.com or call 416-922-5263. Kanda Optical, the name you can trust.
1: साहब आपकी बात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका ये कहना है कि इंश्योरेंस पर रिस्क आपको कई साल पीछे धकेल सकता है। सेहत ठीक नहीं है, आपको अस्पताल जाना पड़ गया और आप कवर नहीं है, जिस बीमारी में मुब्तला हैं आप वो बीमारी कवर नहीं है, या फिर सात समंदर पार से आपने अपने पेरेंट्स को बुलाया है, इंश्योरेंस करवाई नहीं है और अगर करवाई है या कैंसिल करवा दी है और वो कहीं स्लिप हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, उन्हें कोई बीमारी लाहक हो गई है, अस्पताल जाना पड़ गया है, तो बिल एक एक दिन का $5,000 से $7,000 पर डे बनता है। ऐसे लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्होंने ये रिस्क लिया, ये बेवकूफ़ी और हमाकत की कि इंश्योरेंस या तो करवाई नहीं और अगर करवाई तो कैंसिल करवा दी और उसके बाद $2,00,000 का बिल आउटस्टैंडिंग है जिसको पिछले 3 साल से वो भर रहे हैं। ऐसी गलती मत कीजिए। बात करेंगे हम हरप्रीत कौर जी से। वेलकम करते हैं मैडम।
2: गुड आफ्टरनून आमिर जी एंड ऑल माय लिसनर्स।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ हरप्रीत आपसे कि लोग गलती कर देते हैं, सुपर वीजा इंश्योरेंस के हवाले से बात की जाए, मैंडेटरी है वीजा अप्लाई करने के लिए भी, लेकिन लोग समझते हैं वो बड़े चालाक है लेकिन इसी चालाकी में नुकसान कर बैठते हैं कैंसलेशन वगैरह करवा के। आप कैसे इस सिनेरियो को देखती हैं कि जब कैंसलेशन करवा दी जाती है?
2: जी आमिर जी, बड़ा अच्छा सवाल किया और आजकल समर में तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम सब जो है अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सुपर वीजा अप्लाई करते हैं
1: जी।
2: तो इसमें आमिर जी 2 से 3 चीजें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं पहले बताऊंगी अपने लिसनर्स को कि पेरेंट्स के लिए हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले। सबसे मेन चीज कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो सुपर वीजा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी होती है इंश्योरेंस। जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं बैक होम पेरेंट्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो आपको 1 लाख की जो मिनिमम अमाउंट है उसकी कवरेज 1 साल के लिए जरूरी है। 1 साल 365 डेज। ये आजकल हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और वो प्रॉपर चेक करते हैं कि आपके अगर 2 दिन भी कम है 365 में से तो भी वो आपको जो है वहाँ पे आंसरेबल होना पड़ेगा कि इट शुड बी 365 डेज। 365 दिन की इंश्योरेंस पूरी होनी चाहिए और इसके लिए कानून अब काफी सख्त हो गया है। और दूसरी चीज ये होती है आमिर जी कि आपका जब सुपर वीजा लग जाता है तो पेरेंट्स ने जब भी आना है, कुछ लोग कैंसिल करा देते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और 1 साल बाद, जब भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने दोबारा वापस आना है यहाँ पे तो वो उस टाइम में फिर कहते हैं कि हम 3 मंथ्स का ले लेते हैं, उन्होंने 3 मंथ्स लेना है या 6 मंथ का ले लेते हैं। बट नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज सुपर वीजा की डेफिनेशन है 1 लाख की कवरेज फॉर 1 ईयर 365 डेज। ये दोनों चीजें जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए आपकी जब आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आफ्टर गेटिंग द सुपर वीजा यहाँ पर लैंड करते हैं। और दूसरी चीज है आमिर जी कि सब कहते हैं कि थोड़ा कम रेट हो जाए, सस्ती मिल जाए, प्रीमियम ये बहुत ज्यादा आ रहा है। एक चीज है कि अगर आपका प्रीमियम ज्यादा आ रहा है तो आप उसके बेनिफिट्स भी देखिए। प्रीमियम कम भी है और ज्यादा भी है, बट उसमें आपका बेनिफिट्स जो है, कितनी कवरेज है, उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम जो कवरेज ले रहे हैं वो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका पे ऑफ करने के लिए ले रहे हैं। अगर आपको क्लेम ही नहीं मिल रहा, आपकी जो है क्लेम के टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पेपर वर्क में गड़बड़ हो गई है, तो फिर वो चीजें जो है ना वो फिर आपको बहुत सफर करना पड़ता है। सस्ती कंपनीज भी हैं हमारे पास और अच्छी कंपनीज जिनका क्लेम रेट जो है एक्सीलेंट है और कवरेज बेनिफिट एक्स्ट्रा है। तो इसमें जो कवरेज है इसमें हमारी इमरजेंसी मेडिकल कवरेज, उसके अलावा हमारे पास पैरामेडिकल कवरेज, क्रीमेशन इफ समथिंग हैपन, डेथ हो जाती है तो वो क्रीमेशन कवरेज, बेड साइड की कवरेज और एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाती है तो 1 लाख की एक्स्ट्रा वो भी कवरेज है साथ में।
1: बिल्कुल ठीक।
2: कवरेज जो है और बेनिफिट्स कितने दिए गए हैं उन सब चीजों को देख के आप अपना जो है सुपर वीजा का कवरेज ले। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी लिसनर्स को कि प्री एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग मीन्स अगर कोई पेरेंट्स को हेल्थ इश्यू है वो पहले से ही दवाई ले रहे हैं तो वो अप फ्रंट बताएं ताकि हम अपने नोट्स में डाल सके कि ये वाली मेडिकेशन ले रहे हैं और अपनी मेडिकेशन जो है वो साथ लेके आए। और इसके साथ साथ अगर हम हाइड करते हैं और वही चीज यहाँ पे आकर अगर हो जाती है हेल्थ इशू तो फिर हमें क्लेम के टाइम में प्रॉब्लम आता है। तो कभी भी कोई भी चीज हाइड नहीं करें क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड एज। और जितना टाइम अगर पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं सुपर वीजा में, अगर उनको वापिस भी जाना पड़ता है पहले से, तो जो एक साल की इंश्योरेंस ली हुई है ना, जितना टाइम वो रुकेंगे यहाँ पे उतना ही पे करना होगा, फिर आप उसका वो वापिस ले सकते हैं। जस्ट आपको उनका जो है जो डिपार्चर का टिकट्स और बोर्डिंग पास जो पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट है वो सबमिट करके और वो पैसे आपको वापिस मिल जाते हैं। इसमें आप झिझकिए नहीं, बट इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसको प्रॉपर रखें और कवरेज प्रॉपर रखें।
1: बिल्कुल सही।
2: अगर सुपर वीजा डिनाई हो जाता है
1: जी,
2: राइट, उनका वीजा जो है वो डिनाई हो गया है तो जो पेपर हमें मिला है वहां से डिनाई का, तो वो आप देके अपना पूरा पैसा भी वापस ले सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप देयर आर सो मेनी थिंग्स। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आमिर जी आप मेरा नंबर बताइए हमारे लिसनर्स को।
1: छोटी सी बात पर रिस्क मत लीजिए, दिन के $2-3 बनते होंगे, इस पर भी रिस्क ले लेंगे तो ये बहुत बड़ा अनकैलकुलेटेड रिस्क होगा। यहां नंबर है हरप्रीत कौर जी का, ये मिलाएंगे आप 6479652700। ये नंबर चल रहा है आपका हरप्रीत कौर जी?
2: 2700 वाला नंबर मेरा नहीं चल रहा है आमिर जी, नया अच्छा। नंबर मेरा पिछले 6 months से अपडेट हो चुका है 6473346611।
1: मैं दोबारा बता देता हूं नंबर 6473346611। मुझे लगता है पहला वाला नंबर मुझे भी डिलीट करना पड़ेगा हरप्रीत कौर जी।
2: जी जी बिल्कुल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मेरे कई मेरे क्लाइंट्स के पास नंबर है तो नया नंबर फिर से अपडेट करते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप कैश वैल्यू लेना चाहते हैं, आप अपने हर साल अपना पैसा बचाना चाहते हैं कि मेरे पास मेरा पैसा वापिस आए, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छी नई पॉलिसीज आई हैं तो कैश वैल्यू के साथ पहले साल से ही आपका, और डेथ बेनिफिट भी वो आपका जो है मिलियंस तक चला जाता है और अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं आप उसमें। और उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कीजिए 6473346611।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, थैंक यू।
2: थैंक यू सो मच आमिर जी, थैंक यू।
3: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 रूहानी कॉलेज।
4: तेरे नैना ऐसे काफिर।

0: वक्त हो चला है 2:42। दिस इज रेडियो टोरंटो कनाडा और आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। दोस्तों ये मौसम बड़ा अच्छा है, ये फिजा बड़ी खूबसूरत है, लंबी लंबी शामें हैं, लॉन्ग लॉन्ग इवनिंग्स हैं। हम सारा साल इस कुछ महीनों का इंतजार में अच्छे बड़े बड़े विंटर्स निकाल देते हैं, फॉल निकाल देते हैं कि समर आएगा, हम इंजॉय करेंगे। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ चली जाती हैं जब हमारी सेहत हमारा साथ नहीं देती है, हम बीमार हो जाते हैं। कभी तो बीमारी छोटी होती है, सीजनल होती है, कभी बीमारियां अनफॉर्चुनेटली आजकल बड़ी रहती हैं। और आजकल एक और भी चीज़ है कि जो बीमारी है पहले तो किसी एज के साथ आती थी कि एक उम्र हो गई तो ये बीमारी हो जाएगी, एज में आके हमें ऐसी बीमारी हो जाएगी। आजकल आप डायबिटीज़ ले लीजिए, ब्लड प्रेशर ले लीजिए, इवन बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ हैं जिनका क्योर बड़ा मुश्किल है वो भी आजकल कितनी कम उम्र में हो जाती हैं। तो एज नो बार, बीमारी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं आती है, लेकिन ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही जगह आपको मिलता है, वो भी शर्तिया, वो भी नेचुरल, वो भी जड़ी बूटियों से। जब हम बात करते हैं आयुर्वेद और हर्ब्स गुरुजी की, तो एक रेयर जड़ी बूटियां लेकर आते हैं जो हिमालय से और बड़ी बड़ी ऐसी जगह से जाते हैं जहां हम नहीं जा पाते। गुरुजी जाते हैं, अपने आप दवाई लेकर आते हैं, बनाते हैं। गुरुजी और उनकी फैमिली 9 जनरेशन से यही काम कर रहे हैं, उनके पूर्वज। इसीलिए गुरुजी के पास, गुरुजी के हाथों में आप अपने आप को सौंप देते हैं तो आप सही होके ही बाहर निकलते हैं। गुरुजी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून बहन जी, भाई साहब नमस्ते, भाई साहब
2: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी आपके बारे में जिससे हम बात करते हैं वो यही कहता है कि गुरुजी के हाथ में को ऊपर वाले का दिया हुआ जादू है, वो दवा देते, इधर दवा देते हैं उधर तबीयत संभलने लगती है। तो आज हम हाई ब्लड प्रेशर पे आपसे बात करना चाहते हैं, हाउ टू हैंडल दिस।
0: जी
1: यस यस भैया, ये ब्लड प्रेशर भैया होता है, हाई होता है, लो होता है, दोनों में आजकल वो आजकल फैशन तरफ हमारा शरीर में आजकल ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, ये बहुत बहुत साइलेंट किलर है। हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर, हमको आयस को स्लो पाइशन तरफ हमारा नर्वस, हमारा स्ट्रेस, हमारा बॉडी लेवल को, ताकत को कम करके हमको नुकसान करता है हाई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल उसको कंट्रोल में रखना है, खाना पीना में कंट्रोल रखना, नहीं तो ये प्रेशर से हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाता है, नर्वस बल्जिंग हो जाता है, नर्वस वैसा वो बरसट आके स्ट्रोक हो जाता है, हाथ में प्रॉब्लम होता है, वो सारा हो जाता है। इसके लिए मेन प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को और शुगर को दोनों में कंट्रोल करना है, नहीं तो उसको इफेक्ट हमारे ऑर्गन के ऊपर जाके इनसाइड ऑर्गन्स वीक हो जाता है।
2: बिल्कुल ठीक। अगली बात मैं आपसे जानना चाहता हूं गुरुजी, लैक ऑफ एनर्जी के बारे में। कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे हाथ पांव सुन हो जाते हैं, यूं लगता है जैसे खून की कमी है, उनके चेहरे को देखो वो पेल दिखाई देता है, तो आयुर्वेदा इस सिलसिले में क्या कहता है?
1: यस भैया, यस भैया, आप बताया था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सम पीपल उसको कितना खाना खाता है उसको खून नहीं बनाता है, खून किधर से बनाता है उधर वीकनेस हो जाता है, इसलिए उसको एनिमेटिक हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, और उसको वो हेटवी काउंट्स आयन ब्लड में ब्लड वर्क में कम हो जाता है। उस लोगों बाहर देखने के मोटा मोटा दिखता है, बट वीकनेस हो जाता है, नर्व्स में वीकनेस हो जाता है, ताकत कम हो जाता है, नमनेस हो जाता है। नमनेस को दो कारण है, एक बॉडी में ब्लड कम होने तो भी नमनेस हो जाता है, और नमनेस ब्लड नर्व्स को पिंच होता है, नेक में हो जाता है, नहीं तो नीचे हिप में हो जाता है, वैसा वही तो भी हमारा हाथों के ऊपर पैरों के ऊपर नमनेस हो जाता है, वैसा वही तो भी हमारा पास बहुत अच्छा इलाज है, उसको नाम वो सायटिका बताता है। सायटिका नर्व्स बहुत वीक होता है, सायटिका नर्व्स के हमारा लो बैक पेन से नीचे तक जाता है, नम होता है, टिंगलिंग हो जाता है, और सुन हो जाता है, बर्निंग। बहुत लोग देखो भैया, एक साइड बैठ के ड्राइविंग करने लोग, बैठ के काम करने लोगों को ये वो बैठ के बैठने के टाइम में बर्निंग हो जाता है।
0: जी,
1: इसलिए ये नर्व सारा वीक होता है, उसको लिए भी मेरा पास अच्छा है। और आर्थराइटिस के बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा बढ़िया हमारा पास है हेरबल से, ये सारा हम आप सही कहने कहिया था शिवर जी बहन जी, क्या है हम खुद जाता है हिमालय को एंड केरला को, बद्रीनाथ केदारनाथ एंड गंगोत्री यमुनोत्री और गोमुखा तपोवन वैसा वैसा जगह के कोई भी नहीं जा सकता है, वैसा जगह को पेड़ों के ऊपर जाके रेर रेर वो जड़ी बूटे लेकर आता है
0: जी।
1: देखो बहन जी, हिमालय को जाने के टाइम में वेदर बहुत बहुत ट्रबल करता है, आज अभी बहुत अच्छा होता है इमीडिएटली वेदर चेंज हो जाता है।
0: सही, बिल्कुल सही कह रहे।
1: इस साल इस सीजन में जड़ी बूटी आता है सेम, उधर जाके देखने के बाद कुछ भी नहीं होता है, वैसा समटाइम मिलता समटाइम नहीं मिलता है, वैसा हर्बल से हम लेकर आके उसको प्रोसेस करके उससे हम बनाता है। इसलिए हम भैया बताया था हम वो दवा दिए तो इमीडिएट एक दो दिन में हमको फर्क हो जाता है, वो घंटों में फर्क हो जाता है, इसीलिए था क्योंकि भगवान को आशीर्वाद भी हमको चाहिए। और दूसरा बात आप नहीं मानता है बहन जी, ये वो क्या होता है, सारा हर्बल्स पे जान रहता है
0: जी,
1: इसको अंदर जान रहता है, उसको लेने का टाइम होता है उसको करने का टाइम होता है, उससे हम बनाना पड़ता है, वो लेने के टाइम में लेना है, सुबह वाला सुबह लेना है, दोपहर वाला दोपहर लेना है, शाम वाला शाम को लेना है, जड़ी बूटियां
0: जी
1: वैसा टाइम टू टाइम देख के जड़ी बूटियां लेना पड़ता है, जड़ी बूटी लेना पड़ता है, लेके उसको दे तो बिल्कुल भगवान आशीर्वाद से ठीक हो जाता, सारा बीमार के लिए हमारे पास इलाज होता है जी।
0: क्या बात है, देखिए हमें एकदम गुरुजी एक दवाई दे देते हैं और कहते हैं इससे आप ठीक हो जाएंगे और हम एकदम ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे गुरुजी की कितनी मेहनत है, जैसा भी बताया कहाँ कहाँ से लेकर दवाइयां लेकर आते हैं। और आमिर चलते चलते मैं एक लाइन जरूर कहूंगी कि गुरुजी के जो छोटे छोटे लेप्स होते हैं, जो फेस पैक्स होते हैं वो मिरेकल करते हैं चेहरे पर, और ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। और इतनी सारी जो लोग हैं, इतने सारी जो लेडीज हैं, जो बाकी लोग हैं, वो गुरुजी के पास छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारियों का शर्तिया इलाज करते हैं। गुरुजी का कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, चार दिन गुरुजी ब्रैम्पटन में होते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तीन दिन गुरुजी स्कार्ब्रो में होते हैं, मंडे ट्यूजडे वेंसडे, नंबर यही रहता है। गुरुजी के पास आइए और खुशी खुशी अपने घर वापस जाइए सेहतमंद होके हमेशा के लिए। 4374383399 I repeat 4374383399 नंबर बड़ा आसान रखा है गुरुजी, हर किसी को याद है। थैंक यू सो मच, नमस्कार,
1: थैंक यू बेटा।
0: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए, आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रिफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए, राज 416-605-2584
3: बच्चों का बढ़िया फ्यूचर चाहते हैं, रिटायरमेंट पर बेहतरीन और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, बीमारी या डिसेबिलिटी की सूरत में फैमिली की प्रोटेक्शन चाहते हैं या फिर सुपर वीजा इंश्योरेंस चाहते हैं, सेविंग कैसे करनी है और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इन सब के लिए तो सिर्फ लवजोत कौर को ही फोन मिलाना है। RESP, RRSP ट्रेवल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए कॉन्टेक्ट लवजोत कौर, जो मेजर कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करती हैं और आपको बेस्ट रेट्स दिलाती हैं। कॉल कीजिए लवजोत कौर 416-877-8134 इट्स 416-877-8134
2: और साहब जैसे हालात चल रहे हैं, फॉरगेट अबाउट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, आजकल तो कुछ $100 भी बच जाएं या कहीं से मिल जाएं तो यूं लगता है बहुत बड़ी गनीमत हो गई, बहुत बड़ी नेमत हो गई, बहुत बड़ा काम हो गया। यहां बात 100, 2, 4, 500 या 2, 4, 5 हजार की नहीं हो रही, बात यहां हो रही है तकरीबन 70-80 हजार डॉलर की फंडिंग की। और मान लीजिए 80,000 से $100,000 की फंडिंग हो तो उसमें आधे पैसे ग्रांट के होंगे और आधे लोन के होंगे। मान लीजिए आपको $50,000 ग्रांट मिल गई तो कुछ भी लौटाना नहीं है 50,000 में से, वो 50,000 आपका होगा, आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे। ये सब कैसे पॉसिबल होता है, इसके लिए बात करेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
4: थैंक यू वेरी मच जी, एंड सभी को हमारे तरफ से सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।
2: मुझे जरा प्रोसेस बताइए सबसे पहले कि अगर कोई ये ग्रांट या फंडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है इन अ नटशेल।
4: ओके, हम तो रोज ही बोलते रहते हैं अपना प्रोसेस। अभी हमारे पास क्लाइंट बैठे ऑफिस में, आज बड़े सारे क्लाइंट है जिनका अप्रूवल आ चुका है सब गवर्नमेंट फंडिंग का उनके खाते में।
2: अच्छा,
4: तो आपको हम डायरेक्ट बात ही कर देते हैं क्लाइंट से।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। कल तो बात भी हुई, लोगों को ग्रांट मिली, वो लोग जिनको ग्रांट मिली है उनसे बातचीत हुई कल हमारी, तो पूरी तसल्ली से, पूरे एतमाद से, पूरे भरोसे से, बगैर किसी शक शुबे के फोन करें, आपको ग्रांट मिल सकती है और $50,000 तक की ग्रांट और $50,000 तक का लोन मिल सकता है। यहां नंबर दे रहा हूं, यही नंबर मिलाइएगा, बात कीजिएगा 437-264-3175। 50-60 हजार की ग्रांट यानी आपका लोन अलग होगा 50-60 हजार का, और ग्रांट अलग होगी। इसके लिए फोन करेंगे 437-264-3175। जी नागपाल जी,
4: तो ये इसमें कुछ एज लिमिट नहीं है, आप लाइक 30 इयर्स के हैं, 75 इयर्स के हैं, आप तालीम हासिल करते हैं, हुकूमत आपको आपके खाते में फंडिंग देती है।
2: बिल्कुल ठीक।
4: आज की डेट में अगर फैमिली ऑफ फोर है, आपके दो बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, तो उनको $80,000 उनके खाते में आता है, मेरे खाते में नहीं आता।
2: बिल्कुल ठीक है।
4: उसमें से 40,000 ग्रांट का पैसा है, ग्रांट का पैसा तो वो है जो आपने वापिस ही नहीं करना होता, उसे ग्रांट कहते हैं।
2: बिल्कुल सही।
4: बाकी जो रेस्ट $40,000 है वो ऑप्शनल है, लोन है, 0% पे है, 1.5 साल बाद भी उसका ब्याज 2.5% है साल का सिर्फ, और आप उसे 10 साल में लौटाते हैं। मतलब $40,000 का जो लोन मिला आपको ऑप्शनल, उस पे सिर्फ $40 ब्याज है महीने का 10 साल तक। बताओ ऐसा लोन आपको कहाँ मिलेगा? विदाउट क्रेडिट चेक होता है, गवर्नमेंट आपको फंडिंग देती है, क्योंकि आप अपने बच्चों का ख्याल रख पाए, अपने वाइफ का ख्याल रख पाए, आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग सीधा आपके खाते में आते हैं, हमारे खाते में नहीं आते। आसान से कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन है, घर के कंफर्ट से कितने ही क्लाइंट कर रहे हैं, और लाइक 2-3 घंटे आपने मंडे टू फ्राइडे देने होते हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, असाइनमेंट है आसान सी।
2: बिल्कुल ठीक।
4: इंग्लिश आपको आनी चाहिए।
2: मैं आपसे
4: लगानी घर पे, फोन पे चल लगाएं, चाहे कंप्यूटर पे लगाएं, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपकी इनकम फैमिली की 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है, आपको सिर्फ तभी एडवांटेज है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, बैंक नहीं कर रहा। तो अगर आप लो इनकम में, मिडिल इनकम में आते हैं, आपको सिर्फ तब ही फायदा है, तभी आप हमें कॉल करें, क्योंकि कोई सेटिंग नहीं, कोई अप्रोच नहीं है इसके अंदर।
2: बिल्कुल ठीक।
4: आपको सेटिंग करा दो भाई साहब, नई सेटिंग है, सेटिंग वाले बैठे बड़े लोग, उनसे कराए, इस काम में सेटिंग नहीं है, एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी से हम काम कर रहे हैं, 8 साल हो गए हैं। हमारी फीस कितनी है, काम होने के बाद 199 या 499 फ्लैट फीस है। गवर्नमेंट डेंटल केयर में ऐसा लगाती है, चाइल्ड केयर में लगाती है, एजुकेशन में सिमिलर वे में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती है गवर्नमेंट, उसका फायदा ले लें, क्योंकि 28 दिन के बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स को कट कर रही है, लोन आएगा, लोन तो पहले हमारे पे बहुत है। तो कोई इसमें एंड टू एंड हिडन चीज नहीं है, कोई कैच नहीं है जी। फंडिंग का नाम सुनकर हमें लगता है यहाँ को झोल होगा, कोई झोल नहीं है जी। आपके असली से डॉक्यूमेंट लगते हैं, नोटिस ऑफ असेसमेंट, आप मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट, एंड लाइक बच्चे है तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, आपको ज्यादा फायदा है। कोई
2: बिल्कुल सही, जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतना आपका फायदा ज्यादा होगा, उतनी ग्रांट ज्यादा मिलेगी। दो हिस्सों में तकसीम है ये, आपको फंडिंग हो गई उसमें आधी ग्रांट है जो वापस नहीं करनी, आधा लोन हो सकता है जो बहुत इजी टर्म्स पे आपको वापस करना है 2 साल कंप्लीट होने के बाद, फिर वो लंबी कहानी है। सो यहां है नंबर 437-264 3175 इस नंबर पर अभी कॉल करें. आपको ग्रांट लेनी है या लोन लेना है या सिर्फ ग्रांट लेनी है या सिर्फ लोन लेना है, ये भी कर सकते हैं आप. लेकिन अगर आप फैमिली ऑफ फाइव फैमिली ऑफ सिक्स हैं तो $1,00,000 तक का पैसा मिल सकता है. आधा ग्रांट जो वापस नहीं करनी, आधा लोन जो वापस कर सकते हैं. यहां नंबर है 4372643175. नागपाल जी, कल मैं आपके ऑफिस आया था, वहां बहुत से ऐसे लोगों से भी बात हुई थी जिनको ये ग्रांट मिल चुकी है एंड दे वर वेरी एक्साइटेड, दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे वो लोग ये ग्रांट लेके. और जिन्होंने एक साल का डिप्लोमा किया वो दूसरे साल में भी दाखिला लेने के लिए आए हुए थे. तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, एक साल में, एक साल के ही डिप्लोमे में दाखिला लिया जाए या एक एक करके दो साल में या एक ही वक्त में दो साल में?
4: अभी फिलहाल एक साल में लेने का फायदा है.
2: अच्छा,
4: क्योंकि आज आपको जो फंडिंग आ रही है,
2: ठीक है,
4: ग्रांट सारे लोन आ रहा है,
2: ठीक है.
4: नेक्स्ट ईयर का आपको पता है चेंजेस हो रहे हैं, लोन आ रहा है सर, अब ग्रांट नहीं आ रही. तो अभी हम प्रेफर कर रहे हैं क्लाइंट्स को वन ईयर के कोर्स में डालें, बट यस, कुछ लोग दो साल के कोर्स भी चूज कर रहे हैं तो उनकी फंडिंग डबल आती है. नेक्स्ट ईयर भी फिर से सेम पैसे आएंगे, बट नेक्स्ट ईयर लोन के रूप में आएंगे ना, अगर आपके बच्चे छोटे नहीं आए. मतलब आप अभी एक साल का कोर्स करें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें. इसमें कुछ कैच नहीं है, आपका फायदा हाथी जितना है, हमारा फायदा चीटी जितना है. हमें हमारी नजर हमारी छोटी सी चीज गुल्लक पे है, आपकी फंडिंग पे नहीं है. और इसमें आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम होता है हमारे यहाँ पे,
2: बिल्कुल ठीक.
4: जब बात करें इनको भी फंडिंग आ जाइए,
2: बिल्कुल सही. यहाँ है नंबर, अभी मिलाइए, ग्रांट लीजिए, 50,000 से ज्यादा भी मिल सकता है. ये रहा नंबर 4372643175 437 264 3175. बहुत शुक्रिया नागपाल जी आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच.
0: और इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया और मैं शिवानी अपने को होस्ट आमिर के साथ कहती हूँ आपसे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. कल होती है मुलाकात.
2: यहाँ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है इस ख्याल के साथ कि अपना ध्यान रखिए, सबका ख्याल रखिए. गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर के संभल जाना बहुत बड़ी बात होती है. Have a wonderful rest of the day ahead. And hey, you, I love you.

0: ये काल दोस्तों और हैप्पी कनाडा डे आप सभी सुनने वालों को शालिनी की तरह से। दोस्तों आज का दिन सिर्फ छुट्टी का नहीं बल्कि उस देश को दिल से थैंक यू कहने का दिन है जिसने लाखों सपनों को एक नया आसमान दिया। किसी के लिए ये नई शुरुआत की जमीन बनी, किसी के लिए परिवार का सुरक्षित फ्यूचर और किसी के लिए मेहनत को पहचान मिली। कहते हैं जहां मेहनत को मिले सम्मान, जहां हर सपना पाए उड़ान, जहां मेहनत को मिले सम्मान, जहां हर सपना पाए उड़ान, वही बन जाता है अपना जहान। और आज पूरा कनाडा इसी जज्बे का जश्न मना रहा है। आज के शो में बात होगी कनाडा डे की, देश भर के सेलिब्रेशन की, आज की ताजा खबरों की, बॉलीवुड की दुनिया की और आपके पसंदीदा सुपरहिट गानों की। चाय हो, कॉफी हो या फिर कनाडा डे की छुट्टी का मजा आपका रहेगा हमारा साथ। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3 ड्यूरिंग द शो या आफ्टर द शो हमसे सीधे रब्ता कायम कर सकते हैं 416-569-7812। शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
1: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची बुधवार को 3 दिन के भारत दौरे के लिए टोक्यो से नई दिल्ली रवाना हो गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है। भारत पहुंचने के बाद ताकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में भाजपा और कांग्रेस दोनों के सीनियर नेताओं को भारत में न्योता भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे। उन्होंने कहा पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहा है। और अब रुक कर लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरों का। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे अपने आप पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे जुड़े बिलों को सरकार मानसून सत्र में पेश कर सकती है। इंडिगो ने कैबिन बैग यानी हाथ में ले जाने वाले बैग के साथ सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए एक नया और सस्ता किराया इंडिगो लाइट लॉन्च किया। इस बैग में 7 किलोग्राम सामान ले जाया जा सकेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट बन जाने से हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता। शादी उसी स्थिति में मानी जाएगी जब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तय रीति रिवाज पूरे किए गए हों। जिन समुदायों में 7 फेरों की परंपरा है वहां उसके बिना विवाह पूरा नहीं माना जाएगा। और अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरों का। गोल्ड स्ट्रीमिंग अवार्ड सेरेमनी से बाहर निकलते समय एक्ट्रेस नेहा धूपिया पेपराजी पर गुस्सा हो गई। उन्होंने पीछे से वीडियो बनाने और बैक शॉट लेने पर नाराजगी जताई। नेहा ने कहा ये बदतमीजी बंद होनी चाहिए। एक्टर अभिषेक बच्चन ने फिल्म जगत में अपने 26 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी से करीना कपूर के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा कि इतने सालों में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि अब वो कैमरे के सामने ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा सहज महसूस करते हैं। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: दोस्तों, हमारी जो जिंदगी होती है ना, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती जितना हम समझते हैं। पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता जितना हम समझते हैं। अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है 8 घंटे 10 घंटे काम करके थोड़े से पैसे कमाने में, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगी है, आपको चूज करना है कि जिंदगी कैसे जीनी है। लेकिन हमारा ये इंटेंशन होता है कि आप तक पहुंचाए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस, कि कम काम करके, कम घंटे काम करके आप कैसे अपनी लाइफ में पीस पा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, अपनी फैमिली को वक्त दे सकते हैं। और ये सपना जो हमारा होता है ड्रीमी वर्ल्ड का, वो सच कर दिखाया है विन लाइफ टाइम ने। और ये सब कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे रेनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: Good. Good afternoon to you and your listener. First of all, I would like to congratulate you on your Sean Express Ashan Media podcast. Thank you very much.
1: थैंक यू सो मच राफी जी। और आप तो एकदम सुपर हीरो बन चुके हैं हर तरफ सोशल मीडिया पर। वैसे भी आप लोग, आपको लोग जानते थे, बट अब पॉडकास्ट के जरिए लोग और आपको देख रहे हैं और आपको जान रहे हैं। और इतनी सारी इनसाइट्स आपने शेयर करी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट विद मी कि मुझे खुद अचंभा हुआ कि आपके सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, जो भी आप कह रहे थे अपने दिल से कह रहे थे। और आई गेस एक तरह का मिनी सेमिनार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जैसे आप 3 से 4 घंटे का सेमिनार लेते हैं, उसका एक शॉर्ट वर्जन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और ये जो पॉडकास्ट है, लोग शॉन मीडिया के यूट्यूब पेज पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे राफी जी ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप एक बेहतर जिंदगी के हकदार हैं। सो वेल डन राफी जी, ग्रेट टू बी विद यू ड्यूरिंग द पॉडकास्ट।
2: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। बहुत अच्छा सेटअप था हमने, और काफी सारे क्वेश्चन जो इस तरह के इंटरव्यू पे ऑन एयर नहीं हो सकते
1: जी, जी
2: रिकॉर्डेड हो गया और लोग सुन सकते हैं। और क्योंकि आसान इसलिए हमारे लिए था कि ऑनेस्टी इज एफर्टलेस, तो हमें कुछ स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल। लेकिन राफी जी, आपके लिए मुझे लगता है कि एक और काम आपके लिए लोगों ने दिया है, वो ये दिया है कि आप ट्रेडिंग तो करिए लेकिन उसके साथ साथ बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरह भी जरा रुक कीजिए।
2: मैं एक ही काम कर पाऊंगा, लोगों को ट्रेन करूं या एक्टिंग करूं, तो मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो है, मैं लिसनर्स के लिए हवाले से जानना चाहूंगी कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर ऐसा क्या किया जाता है जो आम तौर पर बाकी ट्रेडिंग कंपनीज में लोगों को नहीं नजर आता।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल, 4 offices अक्रॉस टोरंटो, सॉरी कनाडा, 2 टोरंटो में, वैंकूवर में, कैलगरी में। मेंटर्स के साथ बैठते हैं, फेस है, चेहरा है, हॉबी के तौर पर नहीं करते, पिछले 18 साल से करते आए हैं। सारा चीज ट्रांसपेरेंट है, कोई उसमें जो है ऐसी चीज नहीं करते जो हम उसको बैक ना कर सके। तो आप आए, सेमिनार सुने और लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू।
1: वंडरफुल। और ये सेमिनार आपका सैटरडे होता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट है जो अभी कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है विन लाइफ टाइम की तरफ से, कि आपको अपने पैसे लगाए बगैर भी ट्रेडिंग करने का मौका दिया जाता है। तो ये किस तरह से होता है? अगर हम किसी और का पैसे का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या हमारी कुछ अर्निंग होती है उसमें?
2: ये एब्सोल्युटली, बहुत सारी कंपनीज हैं वो आपको अपना कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, आप उनके फंड्स मैनेज करते हैं। रेशियो 80-20 होती है कि 80% विन आपका होता है और रिस्क सारे के सारा उनका होता है। तो बहुत दफा हमने रिजल्ट्स पेश किए हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट कैपिटल, दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी
1: जी। और इसमें कौन कौन सी ऐसी प्री रिक्विजिट्स हैं जो जरूरी हैं ट्रेडिंग के लिए?
2: प्री रिक्विजिट सिर्फ आपकी एक स्ट्रॉन्ग विल है, आप आए सीखें। ना आपको फाइनेंस चाहिए, ना अकाउंटिंग, ना कंप्यूटर, ना मैसेज, सिर्फ आए सीखें, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, रोज के $100 से $200 बनाना शुरू करें और इवेंचुअली विद इन फ्यू मंथ्स आप $1,000 डेली पे भी आ जाएंगे।
1: अच्छा, आपका एक स्टेटमेंट था राफी जी हमारे पॉडकास्ट में, जो लोग बिल्कुल अचंभा कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को लेकर कि 60 to 90 minutes में आपने यू नो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की बात की थी। मैं चाहूंगी वो एक बार दोबारा से रिपीट कर दें हमारे लिसनर्स के लिए।
2: जी एब्सोल्युटली, इसको कहते हैं हम ट्रेड कॉपी की एक फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप 90 मिनट्स में 100 बनाएंगे तो वो, अगर आपके 20 अकाउंट्स हैं तो वो $2,000 बन जाता है। तो वो भी हमारी एक सर्विस है जो हम ऑफर करते हैं, आप आए देखें। तो इट्स नॉट समथिंग के आजकल के दौर में कोई ऐसी कोई किसी को सरप्राइज होने हैं। मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ, इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर जस्ट बिकॉज आपने पिरामिड्स नहीं देखे इसका ये मतलब है पिरामिड एग्जिस्ट नहीं करते,
1: राइट?
2: तो सेम थिंग, जस्ट बिकॉज आपने हमसे मिले नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज होल्ड करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो डेफिनेटली सेमिनार पे आके अटेंड करें।
1: क्या बात है। तो सेमिनार है एवरी सैटरडे दोपहर 1 बजे, बिल्कुल फ्री, नो ऑब्लिगेशन सेमिनार इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा। और नंबर नोट कर लीजिएगा टू बुक योर फ्री सीट्स, बिकॉज लिमिटेड सीट्स हैं, 905-206-1008, दैट्स 905-206-1008, windlifetime.com इज द वेबसाइट टू विजिट। राफी जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने

जिस कंट्री में रह रहे हैं, जो कर्म भूमि है हमारी, उसकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो दोनों देशों को साथ लेकर हम चलते हैं और आज कनाडा डे मना रहे हैं। दिल में बस एक ही एहसास आता है, कितना खूबसूरत देश है ये, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं, रंग हैं, संस्कृति हैं, कहानियां हैं जो मिलकर एक परिवार बनाती हैं। और ऐसे मौके पर एक गीत अपने आप याद आता है जो हम अपने देश के लिए गाते थे, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। और आइए दोस्तों डेडिकेट करते हैं कनाडा को ये प्यारा सा गीत। और ये भी देश कुछ ऐसा ही देश है जहां मेहनत को मौका मिलता है, सपनों को उड़ान मिलती है और हर इंसान को अपनी पहचान के साथ जिंदगी जीने की आजादी मिलती है। मिट्टी बदल सकती है दोस्तों, लेकिन देश में दिल और अपनापन हमेशा रहता है। एंजॉय।

0: थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारा शो पसंद करने के लिए ये छोटी सी कोशिश थी मेरी तरफ से, और अंजलि उमेश आप दोनों का कॉल आया, थैंक्स अ लॉट। और आप बड़े इमोशनल हो गए, अपने देश की याद आने लगी, लेकिन वो तो हमेशा ही आती है। और साथ ही हम सैल्यूट कर रहे हैं कनाडा को भी, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। दोस्तों ये सेगमेंट आप तक पहुँचाया यश विंडोज एंड डोर्स ने। अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है, यानी नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। सुपीरियर स्टाइल, एक्सेप्शनली गुड लुक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग कम्स टुगेदर। और साथ ही दोस्तों फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कॉल कीजिएगा यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। और इसके साथ साथ देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स, टोरंटो से बैंगलोर अगस्त टू सितंबर एंड एन अक्टूबर राउंड ट्रिप 1365 में। नाउ टोरंटो से दिल्ली जुलाई में वन वे जा सकते हैं 1049 में टू बैग्स के साथ। टोरंटो से बेंगलुरु 845 में दो बैग्स के साथ इन सितंबर वन वे। टोरंटो से दिल्ली अक्टूबर में वन वे दो बैग्स के साथ 970, एंड टोरंटो से पेरिस डायरेक्ट फ्लाइट है अगस्त टू सितंबर रिटर्न फेयर 920। कॉल कीजिएगा Deol Travel, two locations to serve you, Etobicoke and Brampton, 905-588-5100 and 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200. एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आपको बताते हैं आज के दिन में और क्या खास होने जा रहा है कनाडा डे के साथ साथ। Stay tuned. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: TD Mosaic Festival is back for 21st year. July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga. The biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi Queen Sanam Marvi from Pakistan. Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India. Delhi to Dublin from Vancouver. Shalom Xavier's Fusion. Ali Kazmi, Bollywood Dance School, Canada. Jadu Entertainment, Rising Star finalists, and the 2026 star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, free children arts and balloon making workshops, children's Mardi Gras parade with marching band. Completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com.
3: Hashtag Holmes and Rahul Kashyap aapke liye lekar aaye hain Brampton and Caledon border par at Mayfield and Gore, freehold towns from mid 700s, semis from mid 800s and detached homes from mid 900s. Master plan community of 2500 homes with cricket pitch, tennis, basketball and pickleball courts, dog park and kids splash pads as neighborhood amenities. Only 10% deposit over 365 days and closing later 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844.
4: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
9: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
8: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
9: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
8: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
10: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा.
3: दोस्तों, प्यार की पहली दस्तक जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होती है. दिल की धड़कनें कुछ तेज हो जाती हैं, चेहरे पर बगैर वजह मुस्कान आ जाती है और हर गीत अपना सा लगने लगता है. लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, ऐसा ही सदाबहार नगमा है जो आज भी सुनते ही दिल को उसी मासूम दौर में लेकर आता है. देवानंद का दिलकश अंदाज, शकीला की मासूम अदाएं और रफी साहब, आशा भोसले और शमशाद बेगम की शानदार आवाजों ने इस गीत को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया. पहली मोहब्बत का एहसास बड़ा खास होता है. हर धड़कन में किसी का नाम पास होता है, ना कोई वजह ना कोई सवाल होता है, बस एक मुस्कान से ही दिल बेकरार होता है. चलते हैं फिल्म CID की तरफ और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना कहते हैं कि जिंदगी में पहली मोहब्बत मिले या ना मिले, लेकिन पहला खूबसूरत एहसास इंसान कभी नहीं भूलता। आपकी नजर शॉन एक्सप्रेस पर।

है अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: शॉन एक्सप्रेस गानों की स्वीट डिश। बहुत प्यारा सा गाना आपकी नजर करेंगे। जब गाना बहुत प्यारा होता है, बहुत मीठा होता है, तो स्वीट डिश याद आती है, और इसीलिए ये स्वीट डिश आप तक पहुंचाई जा रही है दोस्तों, यश विंडोज एंड डोर्स के सौजन्य से। और फिर से आपको बता दें यश विंडोज एंड डोर्स के बारे में, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, पूरे ओंटेरियो में सर्विसेज देते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग होती है विंडोज एंड डोर्स की, और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है, यानी नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। और इसमें आपको स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ मिलती है। अब फ्रेंचाइज ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो यश विंडोज एंड डोर्स को कॉल करें 416-732-3600, 416-732-3600। और इस प्रोग्राम के हिस्से के को स्पॉन्सर हैं देओल ट्रैवल। हमारे साथ नवजोत जुड़ने जा रही हैं लेटेस्ट डील्स के साथ। नवजोत, आपका वेलकम है।
2: थैंक यू सो मच शालिनी। सो आज मैं आई हूँ अमेजिंग डील्स, जैसे कि हम दिवाली सीजन के बारे में बात करेंगे। इसमें दिवाली सीजन में अगर आप टोरंटो से दिल्ली अपने फैमिली को मिलना चाहते हो एंड जाना चाहते हो, तो ये डील आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ $1490 में। अगर आप वन वे कर रहे हो तो $980 में आपको टू बैग्स के साथ दिवाली फेयर मिल रहा है। एंड इसके साथ अगर आप अमेरिका में रहते हो, जैसे कि न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क से दिल्ली जाते हो, तो ये डील आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी $1020 में, एंड वन वे विल कॉस्ट यू $520।
1: क्या बात।
2: सो ये तो हो गए हमारे दिवाली के स्पेशल फेयर्स। इसके साथ साथ हम लेके आए हैं जुलाई टू सितंबर, जैसे कि वेकेशन पीरियड चल रहा है, इसके लिए स्पेशल डील्स है। टोरंटो टू दिल्ली के लिए $1900 में टू बैग्स के साथ, एंड अगर आप दिल्ली से टोरंटो आना चाहते हो तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगी $1350 में दो बैग्स के
1: Very
2: साथ।
1: Nice. क्या बात है।
2: सो इसी डील्स को ग्रैब करने के लिए कॉल करें 9055885100, 9055884200,
1: 9055884200 and 9055885100, Etobicoke and Brampton, two locations to serve you, the old travel. Thank you, Navjot. Have a wonderful rest of the day. आपसे फिर जुड़ेंगे. All the best. जी, और दोस्तों आज जैसे मैंने बताया कि कनाडा डे तो है ही, उसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। सुपर एक्साइटिंग और मीनिंगफुल चीज़ें आज हो रही हैं। इसके अलावा आज है बहुत सारा हा हा हा हा करने का दिन, क्योंकि आज है इंटरनेशनल जोक डे, यानी हंसने हंसाने का दिन। शेयर अ जोक एंड स्प्रेड द स्माइल। और आप में से अगर कोई जोक हमारे साथ शेयर करना चाहे, नाइस एंड क्लीन जोक लेट मी टेल यू, तो डेफिनेटली हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑन एयर 416-593-0055। नेचर लवर्स के लिए आज है अमेरिकन जू डे, वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स को अप्रिशिएट करने का दिन। और हेल्थ हीरोज के लिए आज है इंडिया में डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स को सैल्यूट करने का दिन है, जो होते हैं रियल लाइफ हीरोज। और आज का दिन है अर्ली बर्थ डे, कहते हैं जो जल्दी उठते हैं वही जीतते हैं। सबसे पहले आप जिंदगी में आगे रहेंगे अगर अपना दिन जो है जल्दी शुरू आप कर सकते हैं, तो अगर आपके लिए फीजिबल है तो। नाउ समर वाइब्स ऑन है, क्योंकि आज है नेशनल पैटियो डे, आउटडोर बैठना, फूड, फ्रेंड्स और गुड वाइब्स को एंजॉय करना। इसके लिए तो आपको जरूरत पड़ेगी कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की, जो है लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर कैनेडा वाइड। इनसे आप पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स लगवा सकते हैं, और फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन। टॉप क्वालिटी मटीरियल, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइन, कंपेटिटिव प्राइसिंग, सनरूम बना सकते हैं, कस्टम कैनोपी लगवा सकते हैं। नंबर नोट कर लें 416-831-4790, That's 416-831-4790। और चलते हैं दोस्तों एक बहुत ही स्वीट से पेपी से गाने की तरफ, आपकी नजर करेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416 416-569-7812. That's 416-569-7812. Good afternoon.

0: हम दिल दे चुके सनम का बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर किया शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन सीएमआर एफएम 101.3 हमारा और आपका साथ बरकरार रहेगा 4 बजे तक। और चलिए भाई मस्ती की बात हो गई लेकिन अभी हम बात कर रहे थे ना कि जब हम दूसरी कंट्री में आए हैं अपना सब कुछ छोड़ के तो एक बहुत बड़ा मोटिव है हमारा, बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम यहाँ पर आकर अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाएं, एक अच्छा फ्यूचर अपने बच्चों को दें। अब फ्यूचर सिर्फ हम बातें करके नहीं दे सकते, उनकी फाउंडेशन मजबूत करके देते हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कैसा नाम, जो 6 बुक्स के ऑथर हैं, यूट्यूब चैनल पर 18,000 से ज़्यादा मैथ वीडियोस हैं, 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी जो यूनिक टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ रट्टाफिकेशन में बिलीव नहीं रखती, वो बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट सिखाती है, मैथ सिखाती है और ये सिखाती है कि कैसे उस उन सारे जो प्रिंसिपल्स हैं मैथ्स के उनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपका बच्चा मैथ में स्ट्रगल कर रहा है, बेटर ग्रेड, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, स्टेम प्रोग्राम्स में सक्सेस हासिल करना चाहता है तो जॉइनिंग अस नाउ ऑन एयर अनिल कुमार खंडेलवाल जी, बड़े एक्सपीरियंस्ड मैथमेटिक्स के एजुकेटर हैं। नंबर सबसे पहले नोट कर लें, 6479792791, 6479792791। अनिल जी वेलकम, कैसे हैं आप?
1: सब बढ़िया, नमस्कार नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। और कैनन रेड्डी की सब श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक।
0: थैंक यू सो मच, आपको भी अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ है जुड़ने के लिए। अच्छा अब मैथ एक इस तरह का सब्जेक्ट है अनिल जी कि एक बड़ा फोबिया होता है कुछ लोगों को, और जब माँ बाप को फोबिया है तो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी आ जाता है। तो हमारे कई लिसनर्स ये पूछना चाहते हैं कि खुद तो मैथ्स में वो अच्छे नहीं है तो बच्चों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे में तो जीन्स ही नहीं आए मैथ्स के।
1: वैसे आपने बड़ा कमाल का क्वेश्चन पूछा है, मगर हमारे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं वो उनसे भी आते हैं जो खुद मैथ में बहुत स्ट्रांग है, खुद बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मैं हूँ, और इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। कारण ये है कि कनाडा की अपनी जिंदगी में हमारे पास समय नहीं रहता कि हम अपने बच्चों को खुद गाइड कर पाए। ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई और हमें पढ़ाए। तो ये दो भी रीजन हैं जिस वजह से मेरे पास बच्चे आते हैं। मैं काफी लकी हूँ कि मेरे पास बहुत पढ़े लिखे लोगों के बच्चे भी आते हैं जो कि IB AP प्रोग्राम लेते हैं। ड्रीम्स है उनके कि कनाडा में जब हम आए हैं तो कुछ करके जाएं, तो वाटरलू में एडमिशन लेना और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से बढ़िया बढ़िया कोर्स करना और अपने अरमान पूरे करना उनका एक जो है सपना है जो वो पूरा करते हैं साकार। तो उसके लिए मैथ्स में हम उनको हेल्प करते हैं और देखिए वो हमेशा इसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब उनका सपना साकार होना लगता है और वो मुझे धन्यवाद देते हैं। समर हॉलीडे से बेहतरीन समय है हमारे लिए कि इस समय हम सुकून से समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स मैथ के। जैसे आपने बताया हम रट्टाफिकेशन में बिलीव नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं लोगों को, उसके लिए हमें समय चाहिए। ये नहीं कि कल हमारा टेस्ट है, क्विज है, केवल ये पढ़ा दो, तो ड्यूरिंग दिस सेशन पढ़ा नहीं पाते हम उन्हें। मगर ये समर हॉलीडेज में एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं हम उनके लिए जो आगे आने वाले सालों के लिए उनको मददगार होता है और हेल्प करता है अच्छे से अच्छे ग्रेड लेने के लिए, और वो चाहे किसी भी लेवल पे आज हो कल टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो आप जरूर इस समर हॉलीडे में मेरे पास स्टूडेंट्स को भेजिए। जो एक बार भेजता है वो हर समर मेरे पास बच्चे भेजता है, सीटें लिमिटेड हैं। आप आज ही कॉल करके प्लीज मुझे बुक करें या व्हाट्सएप कर दीजिएगा फुर्सत से इसी नंबर पे 6479792791। अक्सर कॉल मिस हो जाती है मुझसे, तो आप प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस पे, तो मैं आपको इत्मीनान से दूंगा टाइम फ्री। हम लोग आपको सेशन भी देंगे 30 मिनट्स का, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। हाँ जी, और 10% डिस्काउंट जितने भी अपने लिसनर्स हैं वो भी आपको मिलेगा, और आपसे डिस्कशन आराम से कर सकते हैं शाम को, कभी भी आपका टाइम हो टाइम लीजिएगा। और क्योंकि ड्राइव टाइम में मैंने देखा है कि ज्यादा डिस्कशन हो नहीं पाता, 2-4 कॉल मिस हो जाती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि मैं आपको मिस आपकी कॉल को मिस करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर आपके अरमान है तो वो पूरे हों।
0: हाउ नाइस, क्या बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 20 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अनिल कुमार जी का, वो अपने आप नहीं अपनी तारीफ करे, तो ये मैटर मुझे अपने खुद के हाथों में लेना पड़ेगा। और ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 12 तक के स्टूडेंट, थर्ड ग्रेड से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बड़ी पर्सनलाइज्ड 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस हैं और स्पेशल डिस्काउंट रेट्स हैं, जैसे अनिल जी इज वेरी काइंड टू ऑफर दैट स्पेशल डिस्काउंट टू आवर लिसनर्स। दैट्स अमेजिंग अनिल जी, कुछ और आप कहना चाहेंगे बिफोर यू गो, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा, जो बच्चे हमारे पास जैसे बी और बी प्लस आ रहा होता है वो ए और ए प्लस पे लैंड करते हैं, वाटरलू जैसे यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करते हैं, स्कॉलरशिप के साथ भी ज्वाइन करते हैं, मेरे बच्चे वाटरलू के एग्जाम में भी पोजीशन होल्डर लेते हैं और स्टैम्प अवार्ड भी जीतते हैं जो कि $125,000 का है, बिगेस्ट अवार्ड है वो जो कि मेरे स्टूडेंट को मिला है, जिसे एक वक्त हेल्प की जरूरत थी उसको वो अवार्ड मिल सकता है अगर, तो आपका बच्चा कहीं से कहीं पहुंच सकता है, आप प्लीज कॉन्टेक्ट करें।
0: अमेजिंग। दोस्तों हॉटलाइन नंबर है अनिल जी का 6479792791। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी कनाडा डे वंस अगेन एंड एंजॉय योर डे।
1: थैंक यू,
0: टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक ऑन मस्ती की रेलगाड़ी, स्टे ट्यून्ड।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023 मास्टर धनिक महाराज।
0: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-5300,
2: 905-458-5300।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com।
1: #HolmesandRahulKashyap आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकलबॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू अर्ली 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: Sean Express, the musical. Say it loud.

आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@seanmedia.com. शॉन एक्सप्रेस, अ शॉन मीडिया प्रेजेंटेशन.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, जी वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आज कनाडा डे 1 जुलाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। बंदर भाइयों, बर्फ की चादर, मैपल की छांव, दुनिया का सबसे प्यारा है ये गांव। क्षेत्रफल में दुनिया में दूसरा है इसका नाम, क्षेत्रफल में दुनिया में दूसरा है इसका नाम। कनाडा डे पर आओ, करे इसे सलाम। कनाडा डे बहुत बहुत बधाई। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African
2: Lion Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
3: Say whoa! पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल. एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
4: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
3: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट. 6472994757, 6472994757, teamsabarwal.com.

0: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999409।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाई जीडो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन। आज 1 जुलाई कनाडा डे, बहुत बहुत बधाई। बंदर भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले की सड़क पर बारिश में सबसे ज्यादा गड्ढे और पानी भरता है तो कनाडा का रिकॉर्ड सुनिए। पूरी दुनिया में जितने भी प्राकृतिक तालाब यानी कि लेक्स है उनका लगभग 60% हिस्सा अकेले कनाडा में है। यहाँ 20 लाख से भी ज्यादा झीले हैं। मतलब यहाँ के लोग वीकेंड मनाने के लिए लोकेशन नहीं ढूंढते, बस घर से बाहर कदम रखते हैं और सामने एक झील, एक लेक तुरंत नजर आता है। थोड़ा सा ड्राइव करो और सामने लेक, वहां बैठकर मौज करो। कनाडा, कनाडाई लोग इतने शरीफ और पोलाइट होते हैं कि बात बात पर सॉरी बोलते हैं। अगर आप उनसे टकरा जाए तो भी वो खुद ही सॉरी बोल देंगे। ये लोग इतना सॉरी बोलते हैं कि ओंटारियो में 2009 में बकायदा एक एपोलॉजी एक्ट पास करना पड़ा। इस कानून के तहत अगर कोई कोर्ट के बाहर सॉरी बोलता है तो उसे उसकी गलती का इकरारनामा या सबूत नहीं माना जाएगा। ये तो बस उसका हेलो हाय कहने का तरीका है। हाँ जी मित्र भाइयों, और बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं कि सांता क्लॉज नॉर्थ पोल में रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2010 में कनाडा सरकार ने सांता क्लॉज को आधिकारिक रूप से कनाडाई नागरिक घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, कनाडा पोस्ट ने सांता को एक स्पेशल पोस्टल कोड भी दिया है। हो हो HOH OHO यानी कि हो हो, दुनिया भर से बच्चे इस कोड पर चिट्ठियां भेजते हैं और कनाडा के वॉलंटियर्स सांता की तरफ से उनके जवाब भी देते हैं। हाँ जी, कनाडा डे के दिन कनाडा की इंटरेस्टिंग बातें। ये डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त यतीन।
5: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, ये डू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन। लिए चलते हैं आपको एक खूबसूरत नगमे की ओर जिसे स्पॉन्सर किया है यश विंडोज एंड डोर्स ने। महेंद्र भाइयों, उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा yashwindowsanddoors.com। कॉल भी कीजिएगा धर्मेंद्र जी से, आपकी बात होगी, फ्री एस्टिमेट दिया जाएगा 416-732-3600 416-732-3600 यश विंडोज एंड डोर्स। खूबसूरत विंडोज एंड डोर्स, क्वालिटी बेहतरीन और सुरक्षा भी बेहतरीन करे आपके घर की 416-732-3600। आइए चलते हैं ये खूबसूरत नगमे की ओर।

0: इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
7: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
8: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232.
9: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
0: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम यहाँ आपके दोस्त जतीन कनाडा डे। आइए जानते हैं कनाडा की इंटरेस्टिंग बातें। बेंद्र भाइयों, यहाँ इंसान कम और पोलर बियर ध्रुवीय भालू जिसे कहते हैं वो ज्यादा है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की 90% जमीन पर कोई रहता ही नहीं है, सब खाली पड़ी है। चर्चिल मैनिटोबा नाम की एक जगह को तो पोलर बियर कैपिटल कहा जाता है, वहाँ इंसानों से ज्यादा भालू घूमते हैं। यहाँ एक मजेदार नियम है, लोग अपनी कारों के दरवाजे कभी लॉक नहीं करते। क्यों? ताकि अगर सड़क पर चलते हुए अचानक किसी के पीछे पोलर बियर पड़ जाए तो वो बिना चाबी ढूंढे किसी भी कार का दरवाजा खोलकर अंदर छिप सकते हैं। इसे कहते हैं सच्ची पड़ोसी भावना। मेनर भाइयों, अगर हमारे भारत में दूध की थैली फटे तो मम्मी से मार पड़ना तय है, लेकिन ओंटारियो और क्यूबेक जैसी जगहों पर जब लोग ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो उन्हें दूध प्लास्टिक के जग या गत्ते के डिब्बे में नहीं बल्कि 4 लीटर की बड़ी बड़ी प्लास्टिक थैलियों में मिलता है। घर लाकर उसे एक खास बर्तन में रखते हैं और कोने से कैंची से काट कर इस्तेमाल करते हैं। है ना कमाल का जुगाड़। लेकिन आप कहेंगे कि अगर थैली से दूध लीक हो गया तो बेंद्र भाइयों, रिटर्न पॉलिसी बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। और रिटर्न पॉलिसी क्यों है? क्योंकि आप एक दूध की थैली रिटर्न

करने जाएंगे तो साथ में 10 दूसरी चीजें खरीद कर आएंगे। हम सोचते हैं रिटर्न पॉलिसी हमें मजा है, लेकिन जिसने रिटर्न पॉलिसी बनाई है, सोच समझ कर बनाई है, वो जानते हैं कि जब वापस देने आएंगे तो एक चीज वापस देंगे, 5 चीजें नई खरीद कर जाएंगे। उस 5 में से एक वापस करने आएंगे तो दूसरी 6 चीजें खरीद कर जाएंगे। रिटर्न पॉलिसी में भी स्टोर्स बड़ा मुनाफा कर रहे हैं। ये है कनाडा, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं, तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बिंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिडन वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड यूनिट नंबर 44-50 मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3 डिनर 5-10 थर्सडे से संडे लंच 12-3 डिनर 5-10 वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे कॉल करें 905-795-2299 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com गुरुलक्ष्मी स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हमने आपके दोस्त जतीन, 1 जुलाई कनाडा डे मुबारक हो। मित्र भाइयों, आज जिस देश को हम कनाडा कहते हैं उसका नाम दरअसल एक मजेदार गलतफहमी की वजह से पड़ा था। 1535 में जब फ्रांसीसी खोजी जैक्स कार्टियर यहाँ पहुंचे तो स्थानीय स्वदेशी लोगों ने उन्हें अपने गांव का रास्ता दिखाते हुए कहा कनाडा, जिसका उनकी भाषा में मतलब होता है गांव या बस्ती। कार्टियर साहब ने समझा कि इस पूरे इलाके का नाम ही कनाडा है। बस तब से एक छोटे से गांव का नाम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश का नाम बन गया कनाडा। इतिहास में आपने खून खराबे वाली सी जंग सुनी होगी, लेकिन 1859 में ब्रिटेन, जो तब कनाडा पर राज करता था, और अमेरिका के बीच एक अजीबोगरीब जंग छिड़ गई जिसका नाम था द पिग वॉर। हुआ ये कि सैन जुआन द्वीप पर एक अमेरिकी किसान ने ब्रिटिश इलाके के एक सुअर को अपने आलू खाते देखकर गोली मार दी। इस बात पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और 12 साल तक गतिरोध चला। मजे की बात सुनिए, इस पूरी जंग में उस बेचारे सुअर के अलावा किसी भी इंसान की जान नहीं गई। और कनाडा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, आज कनाडा की पहचान उसका लाल और सफेद रंग का मैपल लीफ वाला झंडा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह झंडा हमेशा ऐसा नहीं था? कनाडाई इतिहास में आजादी के बहुत बाद तक, यानी 1965 तक कनाडा का अपना कोई आधिकारिक फ्लैग था ही नहीं। वे ब्रिटेन के यूनियन जैक वाले झंडे का इस्तेमाल करते थे। जब 1965 में इस नए झंडे को डिजाइन किया गया तो इस देश में इस पर महीनों तक संसद में बहस चली और झंडे पर पत्ता होना चाहिए या नहीं। हाँ जी मित्र भाइयों, बहस के बाद मैपल लीफ कैनेडियन फ्लैग पर आया। है ना कनाडा की इंटरेस्टिंग बात। ये ही द वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
5: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
4: हां जी मित्र भाइयों, ये द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बर्फ की चादर, मैपल की छांव, दुनिया का सबसे प्यारा है ये गांव। क्षेत्रफल में दुनिया में दूसरा है इसका नाम। कनाडा डे पर आओ, करे इसे सलाम। आज कनाडा डे, बहुत बहुत बधाई। बात बात पर यहाँ सॉरी कहा जाता है, झगड़ा भी हो तो प्यार से निपटाया जाता है। इतने पोलाइट है यहाँ के सब लोग भाई, गलती किसी की भी हो माफी पहले सामने वाले ने जताई। नदियां और झीले यहाँ इतनी अपार है, नदियां और झीले यहाँ इतनी अपार है, दुनिया के आधे तालाब यही गुलजार है। सर्दियों में पारा जब -30 जाता है, तब टीम हॉर्टन्स का कप ही दिल को बहलाता है। सांता क्लॉज भी यहाँ के नागरिक कहलाते हैं। सांता क्लोज भी यहाँ के नागरिक कहलाते हैं। हो हो के कोड पर सब चिट्ठियां पाते हैं। दूध यहाँ डिब्बों में नहीं थैलियों में आता है। देसी बंदा पहली बार देखकर चकरा जाता है। कहीं पोलर बियर के लिए कार का दरवाजा खुला रहता है, तो कहीं हवा में तैरता मेपल सिरप मीठा बहता है। ब्रम्पटन और मिसिसागा में तो अपना ही राज है। लगे ही ना कि सात समंदर पार बैठे आज है। और गोरे भी अब किंदा जी बोलकर मुस्काते हैं। हर मजहब के लोग यहाँ मिलकर त्योहार मनाते हैं। विविधता की इस धरती को दिल से बधाई। हैप्पी कैनेडा डे दोस्तों, खाओ दिल खोल के मिठाई। ये हिट वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन।

0: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
1: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
2: अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल. एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
3: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
2: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट. 647-299-4757 647-299-4757 teamsabarwal.com. Real estate ka koi sawal,
4: Team Sabarwal. संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार, पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजा हट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, जी वॉइस और हम यहाँ के दोस्त जतीन, कनाडा डे 1 जुलाई, बहुत बहुत बधाई। बहनों भाइयों, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज भले ही कनाडा और अमेरिका दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी और दोस्त दिखते हो, लेकिन 1812 में दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ था। उस समय अमेरिकी सेना ने कनाडा पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया था, लेकिन कनाडा की सेना और ब्रिटिश सैनिकों ने मिलकर उन्हें न सिर्फ पीछे खदेड़ा, बल्कि वॉशिंगटन डीसी तक जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन, जिसे आज व्हाइट हाउस कहते हैं, वहां पर छोटी सी आग लगा दी थी। बाद में उस जले हुए हिस्से को छिपाने के लिए उसे सफेद रंग से रंगा गया, जिसके बाद उसका नाम व्हाइट हाउस पड़ा, ऐसा कहा जाता है। कनाडा के इतिहास की सबसे महंगी चोरी कौन सी थी? द ग्रेट कैनेडियन मैपल सिरप हीस्ट। इतिहास में बैंक डकैती और कोहिनूर की चोरी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी सोने या पैसों की नहीं, बल्कि मैपल सिरप, जो शहद जैसा मीठा लिक्विड जो पैनकेक पर डालकर हमेशा खाते हैं, उसकी हुई थी। 2011-12 में क्यूबेक के एक रिजर्व गोदाम से चोरों ने चुपके से लगभग 3000 टन मैपल सिरप चुरा लिया और उनकी जगह ड्रमों में पानी भर दिया। इस चुराए गए सिरप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $18 मिलियन, लगभग 150 करोड़ रुपये थी। इसे आज भी दुनिया की सबसे मीठी और अनोखी डकैती कहा जाता है। है ना बहनों भाइयों, कनाडा की अजीब दास्तान, यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
5: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
4: हाँ जी बहनों भाइयों, यही डू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। हैप्पी कनाडा डे। बिंदर भाइयों, कनाडा डे पर हम कनाडा के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। आइए एक और बात बताता हूं। यंग स्ट्रीट, दुनिया की सबसे लंबी सड़क का पुराना रिकॉर्ड। बिंदर भाइयों, आप जानते ही है टोरंटो की शान है यंग स्ट्रीट। एक जमाने में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे लंबी सड़क के तौर पर दर्ज था। लगभग 1896 किलोमीटर, 1896 किलोमीटर की ये सड़क। ये टोरंटो से शुरू होकर सीधे ओंटारियो के बॉर्डर तक जाती थी। हालांकि बाद में कुछ तकनीकी बदलाव के कारण यह रिकॉर्ड बदल गया, लेकिन आज भी इस सड़क पर घूमते हुए लोगों की चप्पल घिस जाती है, पर सड़क खत्म नहीं होती। हमारे देश के मजनुओं के लिए तो ये वरदान है। लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो तो पेट्रोल खत्म हो जाए, पर यंग स्ट्रीट नहीं। जीटीए की लाइफलाइन है टोरंटो ट्रांजिट कमीशन यानी टीटीसी। अगर आप टोरंटो में रहते हैं तो अपने सबवे में सफर जरूर किया होगा। यहाँ एक नियम पक्का है, चाहे आपको ऑफिस के लिए कितनी भी जल्दी हो, टीटीसी वाले बीच रास्ते में ट्रेन रोककर अनाउंसमेंट करेंगे ड्यू टू अ सिग्नल डिले।
6: इस सिग्नल डिले के चक्कर में लोग अपनी शादियों में लेट पहुंचे हैं। लेकिन मानो या न मानो, सर्दियों में जब बाहर -20 डिग्री तापमान होता है तो TTC के सबवे स्टेशन ही हमें ठंड से बचाते हैं। वो बात अलग है कि कभी कभी सबवे के अंदर भी खुशबू किसी ताजा बने पिज्जा जैसी नहीं होती। हाँ जी मित्र भाइयों, और CN टावर क्या कहना, कनाडा डे पर अगर आप टोरंटो डाउनटाउन जा रहे हैं तो CN टावर देखना मत भूलिएगा। 553 मीटर ऊंचा ये टावर 30 से ज्यादा सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत था। इसकी सबसे मजेदार चीज ये है कि इसका ग्लास फ्लोर, लोग यहां जाकर नीचे देखते हैं और उनकी जान हलक में आ जाती है। कुछ लोग तो इस कांच पर पैर रखते ही डर जाते हैं, जैसे नीचे साक्षात यमराज खड़े हो। और हाँ, अगर आप इसके एज वॉक पर जा रहे हैं तो हवा में लटकने के पैसे देते हैं तो आप खुद डरे हुए होते हैं फिर भी पैसे देते हैं, लेकिन एडवेंचर भी एक चीज होती है। हाँ जी मित्र भाइयों, कनाडा डे पर कनाडा GTA की इंटरेस्टिंग बातें। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: हाँ जी मित्र भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार है तो लीजिए इस हफ्ते का सवाल। अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत कौन से साल में हुई? 1969, 1985 या 1950? 1969, 1985 या 1950? सही जवाब आपको ईमेल करना है contest@weeklyvoice.com, contest@weeklyvoice.com। एक लकी विनर को मिलेंगे अफ्रीकन लायन सफारीज के पासेस। आप जवाब ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट lionsafari.com। थर्सडे तक हमें आपके सवाल के जवाब मिल जाने चाहिए। तो बेंद्र भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ईमेल कीजिए और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना मत भूलिएगा ताकि इनाम आप तक पहुंच सके। ये हिडन वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन। डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरुलक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का।
1: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
2: हाँ जी मेरे भाइयों, ये रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। दिस फ्राइडे रेडियो वॉइस होगा लाइव ऑन लोकेशन फ्रॉम रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट, कनाडा डे प्रमोशंस। बेंदर भाइयों, कनाडा डे की जबरदस्त सेल लगी है, वहां पर जरूर पहुंचिएगा। 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 6474487402 448-7402। दिस फ्राइडे रियड वॉइस होगा लाइव ऑन लोकेशन फ्रॉम रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट।
4: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।

हाँ जीविंदर भाई, ये डू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए करते हैं जिंदगी की बात। बंदर भाइयों, एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा, एक सीधा गिरा। जो आड़ा गिरा वो अड़ गया, कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए मैं इस नदी को रोक रूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए मैं इस नदी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं पर रोक दूंगा। पर नदी तो बहती जा रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान बनाई थी, वो लगातार संघर्ष कर रहा था, नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचेगी। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। वह ये कहता था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे मिशन तक पहुंचा दूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था, वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है, वह तो यही समझ रहा है कि वह नदी को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या न दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन गया जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत की कोई संभावना नहीं है, और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार की कोई संभावना नहीं है। हमारा जीवन भी उस नदी के समान है जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती है, और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास करता है वो मूर्ख है, क्योंकि न तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है, नहीं रुक सकता है। वह अज्ञान में है जो आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खता करता है। बंदर भाइयों, सुख की धारा जितने दिन बहती है उतने दिन तक बहकर ही रहेगी, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। हम जिंदगी में सीधे हो या आड़े हो, जिंदगी को तो बहने ही वाली है, हमें जिंदगी के साथ बहते जाना है, बस मुस्कुराते हुए। ये थी जिंदगी की बात। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

कनाडा, जहां हमने जन्म तो नहीं लिया पर इसने यशोदा माँ की तरह हमें अपने आंचल में प्यार से समेट भी लिया है ना। अपने कनाडा की यही तो खासियत है भाई कि सबको प्यार से अपना लेता है। एंड टुडे जहां कलर ऑफ आवर प्राइड इज रेड एंड व्हाइट विद मेपल लीफ की मिठास स्वाति एंड हैंसल ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 85 101.3 FM पर सेइंग कि भाई सेलिब्रेशन तो बनता है विद स्पिरिट्स वो ऑलवेज

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com। इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ऑलराइट, ये प्यारा सा गाना था सिलसिला का, हम सभी का मेरे ख्याल से फेवरेट्स की लिस्ट में ये डेफिनेटली आता होगा। शिवहरी का म्यूजिक बहुत ही सीरियस और सुंदर से म्यूजिक के लिए जाने जाते रहे शिवहरी का जो कॉम्बो रहा है, और इसमें जो हरी है वो बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक रहे हैं, बहुत ही हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन की बहुत सुंदर बांसुरी बजाते रहे हैं। और इनके बारे में मैं देख रही थी कि वैसे तो ये प्रयागराज से हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन म्यूजिक में बचपन से इंटरेस्ट था। पापा इनके चाहते थे कि ये ना अखाड़े में उतरे और संगीत के क्षेत्र में ना जाए, रेस्लर

करे। तो पापा को खुश करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग तो शुरू कर दिया अखाड़े में जाकर, लेकिन ही वॉज नॉट एट ऑल गुड एट रेसलिंग, ऐसा उनका मानना था। पर चुपके चुपके चोरी चोरी अपने दोस्त के यहाँ जाकर और म्यूजिक भी प्रैक्टिस करने लगे, सीखने लगे। पर ये भी मानना है इनका कि अखाड़े में बेशक मैं पापा की वजह से जाता था उन्हें खुश करने के लिए, या रेसलिंग उनके खुश करने के लिए सीखने की कोशिश करता था जिसमें मैं अच्छा नहीं निकला, बट इन सब की वजह से एक फायदा हुआ कि स्ट्रेंथ और स्टैमिना जो बिल्डअप हुआ वो बांसुरी बजाने में आज तक मेरे काम आता है। इनकी बांसुरी की तरफ लेके चलती हूँ और साथ में प्यारा सा गाना भी है, विच इज फ्रॉम चांदनी।

अगर इन गर्मियों की छुट्टियों में आप सोच रहे हैं कुछ अलग किया जाए जहां बच्चे घर में आपको परेशान ना करें, उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव सिखाया जाए, उनकी एक लर्निंग एक्टिविटी में डाला जाए जहां वो भी खुश हों, खेले भी, सीखे भी, इंडियन वैल्यूज से टच में आए, अपनी रूट से बेटर तरीके से जुड़े, कंप्लीट डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी हो, तो वही 3 दिन का एक बहुत ही अच्छा सा एनरिचिंग समर वैदिक कैंप लग रहा है जुलाई 20th, 21st and 22nd को 8 से 15 साल के बच्चों के लिए। वहां पर बच्चे जब आप एनरोल करा लेंगे तो सीखेंगे भी और उसके बाद करेंगे भी क्या, योगा, हवन, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, आउटडोर गेम्स होंगे, लेसन होंगे इन वैदिक स्टोरीज, वैल्यूज एंड हमारी वो इंडियन हेरिटेज में। अर्ली रजिस्ट्रेशन अभी चालू है July 1 तक, फटाफट करा ले तो कम पैसे में हो जाएगा, $125 देने होंगे सिर्फ। अगर उसके बाद करवाएंगे July 1 के बाद तो $150 देने हो सकते हैं। और जो आर्य समाज के मेंबर्स हैं या आप बन जाते हैं अगर, तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिमिटेड स्पेस है इसकी, तो फटाफट आज ही रजिस्टर कर ले। कॉल 416-457-4558, 416-457-4558। नंबर नोट नहीं कर पाए तो मुझे कॉल करके नंबर ले ले, पर रजिस्टर आज ही फटाफट जरूर करें। आप देखेंगे बच्चे भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

CMR 101.3 FM पर यू आर विद स्वाति एंड पायस मिनी. एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल, तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं. हमारा हैंडल रहता है rjswati_toronto, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और. आप हर सोशल मीडिया पे हमसे rjswati_toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं. दैट्स माई हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस. कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती है, कोई फीडबैक देना है. और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ. कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं. तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग, एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना. फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है. सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए. तो इट्स वेरी इजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया. तो याद रखें rjswati_toronto. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर. माई नंबर इज 6478305042. दैट 6478305042.

अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट फिल्मी नुक्कड़ .com।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
7: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
6: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
8: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.

वेल, आज की इस छुट्टी की भी बस ऑलमोस्ट हो ही गई है, छुट्टी डे इज ऑलमोस्ट ओवर, पर इवेंट्स ऑफ कैनेडा डे आज भी कई जगह हैं बाकी मेरे दोस्त, खासकर फायरवर्क्स वाले जो आज के दिन होते हैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल से, है ना। मोर इफ वेदर इज ऑल्सो कंड्यूसिव एंड इट फेवर्स। हालांकि कई लोग होते हैं ऐसे जो इसे महज एक एक्स्ट्रा झोली में पड़ी एक छुट्टी की तरह ही ट्रीट करते हैं, बहुत सुस्ताते हैं और बस बस बस खाते हैं, और कहीं जाने को बोलो ना उनसे तो कभी तो भीड़ होगी कितनी, ट्रैफिक जाम होगा कितना, इस सब का बहाना देते हैं, और कभी कल सुबह काम पर भी तो जाना है भाई, इसका हवाला देते हैं। सो ऑन दिस, हर घर में दो तरह के इंसान रहते हैं, एक जिन्हें घर में टिकना नहीं, दूसरे जिन्हें घर से निकलना ही नहीं। वाली नोट, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सेइंग कि आपके घर में जो भी सिनेरियो हो, रिमेंबर कि कीज कभी इसकी चलाना कभी उसकी सुन लो। हाँ, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी टू यू।

0: Happy Canada Day, CMR 101.3 FM की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, टोरंटो 360 टीवी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको कनाडा डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी कनाडा डे। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
2: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड में सिसागा। Information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
3: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
4: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
5: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 Pape Avenue.
6: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम्ब चॉप्स, अफगानी टिक्का, निहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga।
7: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और appliances कहाँ से लेने हैं?
8: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
7: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए next month।
8: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
7: That's wonderful।
8: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 volt का सारा सामान भी मिल जाएगा।
7: Brampton में ये कहाँ पे है?
8: On Bowie, just west of McLaughlin। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca।

0: सिर्फ मॉर्गेजेस दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा तो याद रखिए मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374
1: राजीव तलवार साहब आज के दिन हमारे साथ हुआ करते हैं वेरी रिनाउंड एंड वेरी वेरी पॉपुलर मॉर्गेज एडवाइजर हैं मॉर्गेज ब्रोकर हैं और मॉर्गेज की कोई भी प्रॉब्लम हो वेरी वेल नोन ब्रोकर आप इनसे रब्ता कीजिए ऑन द फोन आपको बता देंगे कि आप अप्रूव हैं या नहीं है लास्ट मिनट की मॉर्गेज के स्पेशलिस्ट हैं अगर आपको कहेंगे कि आपका काम हो जाएगा तो फॉर श्योर आपका काम हो जाएगा 9058191001 इनके रब्ते के नंबर है खुश आमदीद कहेंगे राजीव भाई वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो
2: बड़ी साहब थैंक यू वेरी मच हेलो कैसे हैं आप सब
1: बहुत शुक्रिया आपका बहुत से लोग जो हैं वो कनाडा से बाहर भी रहते हैं वो कैनेडियन जो ओवरसीज रहते हैं उनके मॉर्गेज के हवाले से आप बताइएगा कि उनकी मॉर्गेज हो सकती है और हो सकती है तो आप किस तरह से उनको हेल्प कर सकते
2: हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स आउटसाइड कनाडा रहते हैं बट इस

0: for you. We will prepare a personalized mortgage strategy for every client who's living outside Canada. उसके अलावा बिल्कुल fast और digital communication का इंतजाम है ताकि उनके timeline के हिसाब से, देखिए time वहाँ फर्क हो सकता है, 3 घंटे 4 घंटे का यूरोप में, यूएस में फर्क है, यूरोप में 8-10 घंटे का फर्क है, ऑस्ट्रेलिया में 18 घंटे का फर्क है, तो उस तरह का timeline के लिए भी हमारे पास सारा इंतजाम है ताकि आपके टाइम के ऊपर हम काम करके देंगे. और सपोर्ट बियॉन्ड मॉर्गेज, मॉर्गेज हमारे जो क्लाइंट्स हैं सब जो यूएस में रहते हैं बहुत सारे, उसके अलावा भी वी हैव पर्सनल रिलेशंस, दे कम एंड विजिट अस एंड मीट अस, सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू फॉर क्लाइंट्स हु आर लिविंग आउटसाइड कनाडा. सो अगर सामीन आप जानते हैं आपकी फैमिली में या आपके कोई रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सर्कल जो बाहर रहते हैं एंड दे आर लुकिंग टू डू समथिंग लाइक दिस इन कनाडा, अगर वो कैनेडियन सिटीजन या कैनेडियन पीआर होल्डर हैं तो कॉल अस बैक. डेकेड्स ऑफ मॉर्गेज एक्सपर्टीज है, आपको मालूम है मेरे को 23-24 साल से मैं ये काम कर रहा हूं. और किसी भी तरह के यूनिक फाइनेंसिंग चैलेंजिंग हो, देखिए जो लोग बाहर की इनकम कमाते हैं कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट में जॉब करते हैं, उस इनकम को यहाँ कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे उस पर मॉर्गेज करानी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. वी आर डूइंग इट फॉर अ वेरी वेरी वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत दिनों से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, तो कॉल अस बैक, सी व्हाट वी डू फॉर यू if you or your family is living outside Canada. As long as आप Canadian citizen है, किसी भी तरह का काम Canada में mortgage का या purchase का या refinance का, we will do it without you coming to Canada.
1: अच्छा, एक चीज सिर्फ ये है कि अब जाहिर है ये बाहर हैं तो उनके, और जैसे आपने बता दिया कि उनके टाइम लाइन के मुताबिक आप काम करते हैं, तो इसके लिए कोई टाइम ज्यादा चाहिए होगा या जिस तरह रूटीन में मॉर्गेज हो रही है उसी तरह उन्हें टाइम?
0: नहीं सर, टाइम तो उतना ही चाहिए होता. देखिए अच्छा, क्योंकि बाहर की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इनकम है, 10-5 दिन 15 दिन और लगा लीजिए, 2 भी फालतू लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं. अगर यहाँ पे किसी भी मॉर्गेज को करने में 1-1.5 महीना लग रहा है तो आप 15 दिन और लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं. हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं यूएस में, बहुत जगह हम काम कर रहे हैं. कॉल अस बैक, सी what my office does for you.
1: Right, right. जनाब अगर आप बाहर भी रहते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, जनाब राज तलवार साहब की पूरी टीम आपके लिए 24/7 आपको जो है सहूलत देती है. आप इनसे रब्ता कीजिए और फॉर श्योर आपके मॉर्गेज जो है वो फॉर श्योर हो जाएंगे. नंबर नोट कर लें, 905-819-1001, 905-819-1001. थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं. थैंक यू.
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. बाय लिसनर्स, टॉक टू यू सून.
1: श्योर, थैंक यू वेरी मच. नंबर नोट कीजिए राजीव तलवार साहब का, 905-819-1001. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM और स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003. क्योंकि अब एक घंटे का प्रोग्राम है तो बहुत सी चीजें हम जाहिर है 2-3 दिन में चीजों को जो है वो एडजस्ट करेंगे. अच्छा, एक तो एक हम ये करेंगे कि हम 8 बजे जब कंप्लीट करेंगे प्रोग्राम अपना तो फिर उसके बाद टॉक शो जो है हम अपने सोशल मीडिया पे लेके जाएंगे, यानी यूट्यूब और इसके साथ साथ टिकटॉक और फेसबुक पे, और उसमें एक टॉपिक जो है वो देंगे. जैसे यहाँ 8 पे ख़त्म करेंगे तो फ़ोन नंबर यही इस्तेमाल होगा 416-593-0003, और उसके थ्रू जो है वो तमाम लिसनर जो हैं वो उसके थ्रू जो है वो हमारे टॉक शो में शिरकत कर सकेंगे. उसमें एक ही सवाल होगा, वैसे अभी भी आज क्योंकि कैनेडा डे भी है तो ज़ाहिर है ट्रैफिक भी कम है और पहला दिन भी है तो इसलिए हम वो एक्सपीरियंस आज नहीं करते, कल करेंगे. आज़ाद कश्मीर की 12 नशस्तें जो हैं महाजरिन की नशस्तें ख़त्म होनी चाहिए या नहीं, ये हमारा आज का सवाल है. अभी दरमियान में भी कोई भी इस हवाले से अपनी राय देना चाहे तो मैं उसको 30 सेकंड के लिए ले लूँगा ऑन एयर, और इस तरह से बात जो है हम वो करते रहेंगे. अच्छा, वजूहात ज़ाहिर लोग पूछेंगे क्यों घंटा क्या हो गया, क्यों चेंज किया, तो 3 वजूहात हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो जो हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं वो 8-9 में इंटरव्यूज से थोड़ा सा वो मतलब रिलेक्टेंट रहते हैं, तो तमाम इंटरव्यूज़ हमें इसी दौरान में जो है वो करने होते हैं. और उसके अलावा जो हमारे टॉक शोज़ भी थे उसमें हमारे एड्स भी हम ज़ाहिर नहीं चला रहे होते थे, और फिर वो उसे कह लीजिए यकसानियत कुछ उसमें चीज़ें जो हैं वो चल रही थी. तो अभी चेंज भी आ सकता है कुछ अरसे बाद, ये एक थोड़ा सा फेज़ है जिसमें हम चीज़ों को देखने की चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो मेरे हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे भी रबते में इंशाल्लाह तो रहेंगे. अभी भी आप अगर स्टूडियोज़ में कॉल करके आज़ाद कश्मीर की 12 महाजरिन नशस्तें ख़त्म होनी चाहिए नहीं इस टॉपिक पर 30 सेकंड को अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर स्टूडियोज़ में जैसे कॉल आएंगी जैसे वक्त मिलेगा आप होल्ड कर सकते हैं, मैं उस तरह अपने कॉल लेकर आपकी राय जो है वो ले लूँगा. گرمی شدید، ایسی گرمی یقین کیجئے کہ بیک ہوم میں بھی اس طرح کی گرمی اتنی شدت کی، مطلب وہاں بہت، میں ملتان کا رہنے والا ہوں، مطلب 50 ڈگری سینٹیگریڈ وہاں ٹمپریچر ہوتا ہے، لیکن یہ جو حبس اور یہ چیز جو ہے وہ بہت کم محسوس ہوئی ہے، پتہ نہیں یا

0: क्योंकि इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं तो महसूस कभी नहीं हुआ, लेकिन जो सूरत हाल थी वो खासी मुश्किल आज नज़र आ रही थी। और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में शदीद गर्मी, बरतानिया में 1884 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड में जून अब तक गर्म तरीन माह जून बन गए हैं। स्पेन में शदीद गर्मी के बायस 1028 लोगों की डेथ हुई है। फ्रांस में 1000 अमवात हुई हैं। शदीद तरीन हीट वेव के बायस तकरीबन 15 करोड़ अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं। बरतानिया, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड में आइंदा हफ्ते एक और शदीद हीट वेव आने का खदशा है। पुर्तगाल में भी शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमरीका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी है। वाशिंगटन में 4 जुलाई 1930 अब तक का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड होने का जो है वो इम्कान है। तो गर्मी हर तरफ है, अपना बहुत ख्याल रखिए, पानी खूब पीजिए, तरबूज खाइए और कोशिश कीजिए कि छांव में रहें। इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं हम आज की शायरी।
1: अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। अब ना वो मैं हूं ना तू है ना वो माजी है फराज, अपना वो मैं हूं न तू है न वो माजी है फराज, जैसे दो साए तमन्ना के सराबों में मिले, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।

0: ग्लोबल ट्रेवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं, पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उम्रा और ज्यारात की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147 6472714147।
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough main 2155 Lawrence Avenue East, Lawrence or Bridgemount ka intersection, 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho, aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain. Insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur retreatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East, Bloor or Dixie ke intersection, 905-232-5678।
4: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
5: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
6: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
7: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
8: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
9: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 Dixie Road, Mississauga. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
8: अगर आप अपने friends और family को Canada बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई professional team आपको मुकम्मल consultancy फराहम करेंगे। अगर आप refugee claim करना चाहते हैं या immigration refugee board में किसी भी किस्म के appeal करना चाहते हैं, business इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
10: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। स्टूडियोज़ में रबते के नंबर 416-593-0003। नॉकआउट जो मरहला है जारी है वर्ल्ड कप का, फुटबॉल वर्ल्ड कप का, और पहले मैच में इंग्लैंड ने कांगो को हरा दिया। कांगो एक लीड, एक गोल से बरतरी थी और फिर दो गोल इंग्लैंड ने कर दिए। बेल्जियम और सेनेगल का मैच था, बहुत ख्याल था कि सेनेगल 2-0 से जीत रहा था, फाइनल स्कोर 3-2 हो गया और बेल्जियम जीत गया। हालांकि हमें 10-1 मिनट बाकी थे जब मैं निकला था, देख के 2-0 था उस वक्त। और एक और अहम मैच जो है वो यूएस का है, आज रात 8 बजे खेला जाएगा, यूएसए और बोस्निया हर्जेगोविना के दरमियान। यूएसए जो है वो फेवरेट टीम है, लेकिन यहाँ कुछ समझ नहीं आ रही कि फेवरेट भी जो है वो हारते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमें जो है टूर्नामेंट से आउट हो गई। रश देखने वाला है, हैरान कुन तौर पर रश है, इतने लोग और इतनी महंगी टिकटों के बावजूद ये शौक ही ऐसा है। और फिर बाद का जश्न मनाते हैं तो उसमें कुछ नुकसान भी हो जाता है। मैक्सिको कल जीता, लेकिन 40 साल के बाद जो है उनकी प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हुई थी। जश्न के दौरान भगदड़ मच गई, कम अज कम 3 अफराद जो है दम घुटने के बाद जो है वो जान की बाजी से जो है वो गए हैं। इक्वाडोर को उन्होंने 2-0 से जो है वो शिकस्त दी थी। लेकिन देखने वाले नज़ारे हैं, जिस कलर के कपड़े उस मुल्क के हैं या टीम के हैं वो स्टेडियम भरक भरा नजर आता है, और जश्न का सा जो है हर मैच के बाद समा होता है। जीतने वाले खुश होते हैं, हारने वाले अफसरदा होते हैं, लेकिन क्या कीजिए, जब दो टीमें खेलेंगी तो एक ही मैच जो है वो एक ही टीम जो है वो जीत सकती है। इब्राहिम की खूबसूरत आवाज़ आपकी समातों की नज़र।

0: Immigration.
1: जी हाँ, ICICI इमिग्रेशन दुनिया भर से कहीं से भी आपके दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, प्यारे आना चाह रहे हैं कनाडा में, आप इनसे रब्ता कीजिए 905-461-2424. आज कनाडा डे है, मसरूफ हैं एमडी भाई, इसलिए हमसे आपकी मुलाकात नहीं करवा सके। और US में अगर कोई बिजनेस आप लेना चाह रहे हैं तो इनके पास बहुत ही स्पेशल प्लान एंड ऑफर्स हैं, आप कॉल कर लीजिए 905-461-2424. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. प्राइम मिनिस्टर हमारे मार्क कार्नी को प्रेशर में हैं, वो कीमतें बढ़ रही हैं और ओवरऑल अगर आप देखें, ठीक है इकॉनमी के मसाइल ज़रूर है लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ग्रॉसरी जो कल आप आज से कुछ साल पहले तक जो है तकरीबन डबल बाजूकात लगता है कि प्राइसेस हो गए हैं, तेल की प्राइसेस तो चलें कुछ कम हो रही हैं, अब ग्रॉसरी रिबेट शायद 3 जुलाई से उसके चेक्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो महंगाई का जो मामला है उससे सभी लोग जो हैं परेशान नज़र आते हैं। और ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट्स जो हुआ करती हैं, ये तो जो है वो वेलफेयर स्टेट है, यहाँ ज़रूरत है, चीज़ें काफ़ी हद तक मिलती हैं आवाम को, लेकिन बहुत सा कुछ काम जो है वो करने की ज़रूरत है। यहाँ भी रेड टेप के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं कि हैं का वाकई कुछ नज़र आते हैं। कुछ कोशिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि आम आदमी जो है, जो लो पेड हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करें। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी।

0: our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
1: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
3: अपने मकान की next month closing है. कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है. टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे.
3: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ.
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं.
3: दैट्स वंडरफुल.
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा.
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन. टेलीफोन 9054502828 और विजिट brampton appliances.ca.
5: सिर्फ मॉर्गेजेस. दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार. मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho, Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 9058191001, 9058191001, license number 12374.
6: SSR Auto Service, 921 Bay Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, light repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabeel Ashraf saab se raabta kijiye. 416-466-8782. 416-466-8782. Toronto mein 23 saal 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पे.
7: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ. 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600.
8: सिंस 1993 MWC फूड बैंक्स हैव प्रोवाइडेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद नॉन पेरिशेबल फूड, हलाल मीट एंड एसेंशियल हाउसहोल्ड आइटम्स. ओवर 10,000 फैमिलीज across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
9: अजनब, आपसे इजाजत कर लेने का वक्त आ गया है. थोड़ा चेंज आया, जैसे मैंने आपको बताया है, कल से हम 8 बजे से ऑनवर्ड जो है वो लाइव कॉल्स लिया करेंगे एक टॉपिक देके, लेकिन उसको हम सोशल मीडिया अपने YouTube पे, Facebook पे और TikTok पे जो है वो आपके लिए करेंगे. दरमियान में कुछ न्यूज़ भी आ जाएंगे, दो तीन और भी चीज़ें. अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप मुझे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं 416-300-5600, 416-300-5600. बहुत से लोग शायद 8 बजे की न्यूज़ का इंतजार कर रहे हो, लेकिन बहरहाल अब ऐसा ही है, चेंज आया है थोड़ा सा, कुछ दिन इस तरह से चलेगा, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे. तो चलिए जी, आप दुआ में रखिएगा, याद हौसला नहीं हारना, मेरा हौसला भी खोने की चीज़ एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छी की आवाज़ बशत जिंदगी. इंशाल्लाह हमारे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे. स्टूडियो इंजीनियर मरियम और मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे माला.